0: यहाँ 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
3: हाँ।
2: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ।
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ।
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया ही, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: जिस बात का डर था वही हुआ, lymphosarcoma of the intestine.
8: अरे कहना क्या चाहते हो?
9: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
10: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
11: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
10: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
11: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
12: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
16: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
16: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
12: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
17: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
12: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपर हिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2. Starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
18: Get ready as the perfect cocktail mixture with Cocktail 2, releasing on the 19th of June at theater near you.
19: भाई क्या हो रहा है? It is 7:05 और मैं आ चुकी हूँ आपकी फेव, absolutely your bestie, RJ Ippy the Hippy, and y'all are listening to An Evening in Dallas on Fun Asia 104.9 FM. क्योंकि यहीं पे तो सारा फन होता है यार, और कहाँ होगा, फन ही फन होता है, मन को खुश करने वाला फन है ना गाइज। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं कल की तरह उतनी थकी हुई नहीं हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आज मैंने चीनी कम खाई है, चीनी कम खाई, चीनी कम खाई। मे बी आई शुड प्ले दैट सॉन्ग लेटर, बहुत दिन नहीं सुना है वो गाना। लेकिन एक्चुअली एज अ फैक्ट, अगर आपको पता है मैं बहुत हेल्थ एंड फिटनेस वगैरह के बारे में बोलती हूँ, एंड आई रियलाइज माई बॉडी और एक्चुअली सबकी बॉडी एवरीवन्स, जब आप ज़्यादा शुगर कंजम्पशन करते हो ना दिन में, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा जल्दी ख़त्म होती है। आई मीन इट्स जस्ट सो वाइल्ड, इट्स जस्ट लाइक यू गेट दिस लाइक योर ब्लड शुगर गोज अप लाइक सुपर सुपर फास्ट एंड देन इट जस्ट क्रैशेस कमिंग डाउन, और फिर तब इतनी जल्दी नींद भी आती है एंड दी एनर्जी इज नॉट सस्टेन्ड थ्रू आउट द नाइट। भाई आज तो मैंने चीनी नहीं खाई है, मतलब आई ओनली हैड लाइक वन टाइनी लिटिल ट्रीट अराउंड 3 o'clock, बट देन अदर देन दैट आई हैव बीन सुपर हेल्थी, वेरी हाई प्रोटीन, लेस कार्ब्स, एंड आई फील रियली गुड एंड एनर्जाइज, सस्टेन्ड कंसिस्टेंट एनर्जी, बिकॉज एक झटके से एफर्ट डालने का कोई फायदा नहीं है, एक झटके से एनर्जी का कोई फायदा नहीं है। एनर्जी वो होती है जो होनी चाहिए लाइफ में, जैसे कि प्यार, कंसिस्टेंट एवरी सिंगल डे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि एक महीने का प्यार आया और ख़त्म हुआ और चला गया, सिचुएशनशिप बन गई और फिर बाद में यू स्टिल फील लाइक नॉट सो ग्रेट, राइट। एनीवेज गाइज, आई विल प्ले यू अ सॉन्ग, देन वी गोना कम बैक। आपको पता ही है कॉकटेल 2 रिलीज होने वाली है, सो आई विल प्ले अ न्यू सॉन्ग From Cocktail 2, शायद आपने सुना है, नहीं सुना है, और अगर नहीं सुना है तो आज सुन लेना, okay? Here we go, but अभी कुछ और, पहले पुराना, फिर Cocktail 2, okay?

I mean, thanks to this dating app culture, world has changed wildly, okay? So let me tell you, after the super hit success of 2012's Cocktail, the drama, romance, friendship are back with a fresh twist. Get ready for Cocktail 2, releasing in theaters on June 19th, starring Shahid Kapoor, Kriti Shannon, and Rashmika Mandanna. A new story, new emotions, and a brand new cocktail of love, friendship, and heartbreak that awaits you. Don't miss Cocktail 2 in theaters on June 19th. You know why I'm so interested? Because, see, when I came to the US, it was like close to 2018. Actually, close to 2018. In 2018, mein hi mein aayi thi. And I came here after this really solid, heartbreaking, दिल दहलाने वाली मतलब ब्रेकअप ऐसी वाली स्टोरी के बाद मैंने अपनी लाइफ को सोचा कि भाई लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेट्स गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट, लेट्स गो टू अ न्यू कंट्री बिकॉज व्हाई नॉट, आई लव चैलेंजेस इन लाइफ. तो मैंने सोचा चलो भाई टाटा बाय बाय करके चलो अमेरिका चलते हैं, वील स्टार्ट न्यू, मे बी वील फॉल इन लव विद समवन हियर, आई डोंट नो, वील सी वॉट हैपन्स. देन सिंस देन आई एम टेलिंग यू, आई हैव ट्राइड डेटिंग, I have tried dating. I have tried my hands at dating. I came to America 2018 to study undergrad again. So I was already in my 30s. ठीक है? I had just turned 30, and then I joined UNT for my undergrad. And उसमें मेरे सारे क्लासमेट्स जो थे, they were all 17, 18 साल, 21, 20, 22 साल, ऐसे छोटे छोटे छोटे छोटे बच्चे थे, which is great. But I'm a woman in her 30s and I don't date younger, okay? So then I was like, guys, I don't think I can date anyone from my close social circle. I think अगर कोई मिलेगा तो मुझे बाहर से ही ढूंढना पड़ेगा. So अगर आप अमेरिका में आए हो, यू डोंट नो वेयर एल्स टू इंटरैक्ट, यू नो इट्स नॉट योर सोशल सर्कल, कहीं भी ऐसे उठ के चले जाए, इट्स इट्स काइंड ऑफ हार्ड. सो देन यू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन दीज डेटिंग ऐप वगैरह का कल्चर, यू नो वॉट टू डू, वेयर एल्स आर यू गोना मीट पीपल. यहाँ पे जो मेरी एज के जो लोग हैं हु आर सिंगल और मे बी इन दैट 20s नाउ हु आर सिंगल एंड लुकिंग टू गेट मैरिड, दे ऑल्सो स्टार्ट डूइंग डेटिंग ऐप स्टफ और गो टू शादी डॉट कॉम एंड जीवन साथी डॉट कॉम एंड वगैरह वगैरह वगैरह जस्ट टू फाइंड देयर लाइफ पार्टनर. सबकी यही एक ही कहानी है, भाई हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है, हमें तो कोई मिल नहीं रहा है, लोग इतने खराब हो चुके हैं वगैरह वगैरह. एवरी वन इज त्रस्त एंड परेशान कि भाई क्या हो रहा है जिंदगी के साथ. बट आई टेल यू वट हैपन्स, वट हैपन्स इज डेटिंग सिचुएशन हैज़ चेंज सो मच, रिलेशनशिप्स हैव चेंज सो मच. हम लोगों को पेशेंस ही नहीं है. हमारा ये जो जनरेशन है ना, एंड आई एम तो अ लेट मिलेनियल, मेरे को तो छोड़ ही दो, बट इवन द जेंजी जनरेशन, द यंग वाले जो भी हैं, वी गाइज डोंट हैव पेशेंस बिकॉज वी आर सो यूज टू गेटिंग एवरी थिंग फास्ट एंड एवरी थिंग ऑन आर फिंगर टिप्स. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ क्विक स्वाइप राइट और अ क्विक स्वाइप लेफ्ट. यू नो अगर भूख लगे फटाफट यहाँ टाको बेल चले गए, मैकडोनल्ड्स चले गए, यू ऑर्डर वट एवर इज ऑन द मेन्यू एंड यू ईट इट एंड यू कम बैक. इट मे नॉट बी एज एपेटाइजिंग बट वी स्टिल गो एंड डू इट एनी वेज, राइट? सेम विद लाइक एवरीथिंग इज फास्ट फूड, एवरीथिंग इज रेडीमेड, कपड़े भी रेडीमेड होते हैं. पहले के जमाने में टेलर मेड होते थे कपड़े, नाउ टेलर मेड इज सो एक्सपेंसिव, लाइक यू कॉन्ट बेसिकली डू इट इन अमेरिका. एवरीथिंग इज फास्ट फैशन, नहीं होगा तो शीन पे मिल जाएगा, शीन पे नहीं मिलेगा तो कहीं और मिल जाएगा, जेसी पे नहीं मिल जाएगा, वट एवर, यू कैन बाय इट एनी वेयर, राइट? पीपल विल ऑल्सो डू इट इंस्टेड ऑफ यू नो स्पेंडिंग लाइक हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स ऑन अ बनाना रिपब्लिक शर्ट और समथिंग. पीपल विल चूज टू बाय शीन और पीपल विल बिकॉज इट्स फास्टर, इट्स चीपर, एंड देन यू कैन थ्रो इट एंड गेट न्यू वॉर्ड्रोब इन लाइक इन अ रियली शॉर्ट टाइम. सेम विद आर ब्राउजिंग, सेम विद आर फोन्स, बिकॉज ऑल द रील्स. एक टाइम पे याद है जब आपके वीडियोज इंस्टाग्राम पे 1 मिनट तक के होते थे वीडियोज, नाउ 1 मिनट लॉन्ग वीडियो सीम लाइक सो लॉन्ग. Nobody has the patience more than 15 seconds to sit and scroll through a video. तो भाई अगर हमारी पेशेंस ही इतनी है लाइफ में, बाकी सब चीज़ों में एवरीथिंग वी नीड एट आर फिंगर टिप्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी फास्ट. इन फैक्ट विद द अबंडेंस ऑफ डोर डैश एंड ऑल द उबर ईट्स एंड एवरीथिंग, ग्रब हब कितने सारे हैं, पीपल आर नॉट इवन गोइंग टेकिंग द एफर्ट टू गो आउट टू ईट एनी मोर. लाइक अच्छा हम तो घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, वाई शुड बी गो आउट. It's become such a culture that we want everything on our fingertips, everything fast, everything right now. I mean, love and relationships have also become like that. And Cocktail 2 kind of also touches similar things upon that, but we will talk more about that when we come back from this break. And until then, enjoy the song, new song from Cocktail 2.

ऑलराइट गाइस, वी आर बैक। तो भाई, आपने प्लॉट सुना है उसका? अगर सुना नहीं है या देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, तो अभी सुन लो। बेसिकली कॉकटेल 2 में क्या होता है? वैसे मैं पूरी तो नहीं बता रही स्टोरी, क्योंकि फिर आप मूवी नहीं देखोगे और देन इट्स सच अ फेल। बट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ, सो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ लाइक अ लव ट्राइंगल, बट इट्स मोर देन अ लव ट्राइंगल। यू नो, इट्स लाइक द सेम थिंग दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। पीपल डोंट हैव पेशेंस एनी मोर बिकॉज देर आर सो मैनी ऑप्शन अवेलेबल, सो मैनी ऑप्शन दैट यू जस्ट काइंड ऑफ वांट टू बी लाइक, ओ अच्छा ये नहीं वर्कआउट हुआ तो कोई दूसरा तो है। आई थिंक डेटिंग ऐप का कल्चर भी वही हो चुका है। यू नो, इट्स लाइक यू स्वाइप राइट ऑन दिस वन पर्सन, यू डेट देम फॉर अ ईयर, अगर नहीं वर्कआउट हुआ कोई बात नहीं, गोस्ट देम, उनको कॉल ही करना बंद कर दो, फिर गायब हो जाओ एंड देन यू फाइंड समवन न्यू टू स्वाइप ऑन, राइट? आई मीन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट? आई एम टेलिंग यू, आई हैव बिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट कॉइन। लाइक आई हैव बिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट। सो वेल, इट इज वॉट इट इज, सच इज लाइफ, यू नो दैट दिस इज वॉट 2026 is all about, and that is what Cocktail 2 is talking about. Basically, there is a couple, they're in a long-term relationship, they're kind of happy, but after a long-term relationship, they've been like together for about 10 years. Thodi relationship thodi thandi ho padi jati hai, you know, it gets boring and stuff like that. But then, wo, the girl's bestie comes into town, and she's like a burst of energy because she's like a free spirit, free bird, aise aise karke. And then she and the guy, they land up getting closer together. एंड देन फिर एक लव ट्राइंगल बन जाता है, वैसे वैसे कुछ कुछ कुछ कुछ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उससे मुझे एक चीज़ याद आया, आई मीन दे कम टुगेदर टू जस्ट बी फ्रेंड्स, एंड मेरे लाइफ में ना मेरे बहुत सारे गाय फ्रेंड्स रह चुके हैं। आई हैव हैड सो मैनी गाय फ्रेंड्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, बिकॉज गाइज के साथ जो फ्रेंडशिप रहती है, गर्ल्स के साथ जो फ्रेंडशिप रहती है, वो अलग रहती है। आई लव माई गर्ल फ्रेंड्स ऑल्सो, आई लव देम टू डेथ, बट ऑल्सो I've had really good, amazing, very supportive guy friends also. तो पर मैं आजकल ना, आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू दीज इंस्टाग्राम रील्स एंड स्टफ, एंड आई वॉज वंडरिंग, देर वर लॉट ऑफ दीज वीडियोज आई वॉज शोइंग अप कि गर्ल्स एंड गाइज कैन नेवर बी फ्रेंड्स। अगर आपकी जिंदगी में कोई गाय फ्रेंड्स है, सो दे सीक्रेटली हैव अ क्रश ऑन यू, या आपको वो पसंद करते हैं, या दे सीक्रेटली विश दैट आप उनकी लाइफ में आ जाए। सो I want to know your opinion. What do you think about it? I mean, do you think guys and girls can have a completely platonic friendship? Do you really think that? Or do you secretly think that, bhai, as a girl, girl and guys can't be friends, and the guys secretly admire the girls that they are friends with, especially besties with. And the same goes vice versa, by the way. So you can call me and let me know. On 972-235-5555. And tab tak ke liye aap ye gana suniye, and we'll be back with some more amazing, amazing music.

Guys, I'm so grateful. Thank you for all the calls and sharing your opinion. अभी ब्रेक हमें ब्रेक हम जाने वाले हैं ये पांच मिनट के अंदर अंदर, लेकिन उसके पहले आई गॉट अनदर कॉल फ्रॉम साइस. और साई ने ये बोला कि देखो गर्ल्स एंड गाइज कांट बी फ्रेंड्स. और उनका रीजनिंग पता है क्या था? उनका रीजनिंग ये था कि ही न्यू टू पीपल, दिस गाय एंड दिस गर्ल, एंड दे वर बेस्टीज, दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मतलब बचपन के साथी थे, दे वर लाइक मतलब कुछ और ही फ्रेंडशिप थी उनकी. पर उन लोगों ने जब वो बड़े हुए देन दे गॉट मैरिड टू डिफरेंट पीपल, बट देयर फ्रेंडशिप वॉज सो क्लोज, इतनी गहरी फ्रेंडशिप थी उनकी कि उनके जो सिग्निफिकेंट अदर्स थे दे डिडंट लाइक कि भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त कैसे बन सकते हैं. तो उनके जो सिग्निफिकेंट अदर्स जो थे उन्होंने बोला कि भाई यू कांट बी फ्रेंड्स विथ योर बेस्टी फ्रॉम बचपन का, बिकॉज भाई वी हैव अ प्रॉब्लम विद इट एंड दे गॉट जेलस. तो इवेंचुअली उनकी जो इतनी बचपन की जो इतनी गहरी दोस्ती थी वो दोस्ती टूट गई एंड दे आर नॉट इवन फ्रेंड्स एनी मोर. दे नॉट दे डोंट टॉक टू ईच अदर, बट देयर फ्रेंडशिप वॉज अपेरेंटली नेक्स्ट लेवल. एंड सो दैट्स वाई ही सेज गर्ल्स एंड गाइज कांट बी फ्रेंड्स, बिकॉज अगर उन दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनके पार्टनर्स को जरूर प्रॉब्लम होगी. इन माई ओपिनियन पता है क्या होता है, वो भी एक सिचुएशन होती है ना. अगर आप अपने पार्टनर को प्लीज करने के लिए यू ब्रेकिंग अप योर फ्रेंडशिप, दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर सपोर्टिव पार्टनर एंड आई एब्सोल्यूटली रिस्पेक्ट इट. बट आई ऑल्सो थिंक दैट्स अ पार्टनर्स प्रॉब्लम, बिकॉज मे बी उनकी वो खुद की इनसिक्योरिटी है which maybe they haven't dealt with yet. Because, I mean, girls and guys can be friends if they want to, but if your partner doesn't like that you have a guy friend, well, that's a partner's problem. That's not the friendship's problem. You know, that's the partner's problem. Mujhe laga ki the partners had a problem when he had to explain the story to me like 3 times. Mujhe laga the partners had such a problem ki unhone fir apne partner ko hi chhod diya, then they found each other back and wo ek dusre se shaadi kar rahe hain ab and so on and so forth. Well, wo nahi hota hai, wo sirf TV mein hota hai. Lekin guys, this next song goes out to Zimran, who is my regular listener. Zimran, thank you for calling every time, and this next song goes out to you. This is Bandhu 2.0 from Cocktail 2.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: बेटा, 95% आए?
8: हाँ मम्मी।
7: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
9: मेरा?
7: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
9: वो
10: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
11: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट, मेक योर स्पेशल मोमेंट्स इवन मोर मेमोरेबल एट फन पिज्जा किचन कॉलोनी। रेंट प्राइवेट पार्टी स्पेस फॉर 3 hours एट जस्ट $200 विद कस्टमाइज menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
12: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
13: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
14: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
15: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना।
16: गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2, रिलीजिंग ऑन द 19th of June एट थिएटर नियर यू।

Guys, वो तो one of my favorite songs है. I mean, रंगसारी, that was रंगसारी by कनिष्क सेठ एंड कविता सेठ. उसके पहले मैंने आप सबके लिए बजाया था. The last song I believe that I played for you was Softly by करण औजला. एंड उसके पहले मैंने आपके लिए बजाया था ओ गुजरिया बाय शेफाली अलवारेज. एंड मूविंग ऑन, और उसके पहले मैंने बजाया था रश्मीत कौर का गाना. सो इन केस यू मिस्ड एनी ऑफ दोज ट्यून्स और यू वॉन्ट टू गो बैक एंड लिसन टू दोज ट्यून्स, यू कैन ऑलवेज चेक दम आउट. गाइस, दिस इज द टाइम आप जिसके लिए वेट कर रहे थे. एग्जैक्टली, हमारा फ्री गिव अवे आने वाला आ चुका है. एक्चुअली गिव अवे का टाइम हो चुका है. एंड व्हाट इज द गिव अवे? इट इज अ गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन. मतलब फन पिज्जा किचन, इट्स सुपर फन एंड इट्स पिज्जा. एंड आपको यमी यमी पिज्जा मिलेगा विद अ देसी ट्विस्ट. यम, वे फ्लेवर मीट्स फायर. फॉर ऑल माई वेजी लवर्स, आप उनका अचारी पनीर पिज्जा ट्राई करिए, या फिर फॉर माई मीट लवर्स, यू कैन ट्राई द तंदूरी चिकन पिज्जा. यम, सो गुड. मेरे मुंह में वैसे ही पानी आ रहा है, मैं डिनर भी खा के आई हूँ आज तो. वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस, देर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्जा किचन. एंड अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो आपको मिल सकता है $10 का गिफ्ट कार्ड. और अगर आपने मेरा शो सुना है पहले, देन यू नो दिस इज द आवर ऑफ कॉपी कैट. एग्जैक्टली, मैं एक गाना बजाऊंगी विच इज इन अ डिफरेंट लैंग्वेज अदर देन हिंदी, जो ओरिजिनल है इस गाने का. आपको मुझे उसका इंग्लिश गाना बजाना बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंग्लिश सॉन्ग. भाई मैंने गाना ही नहीं सुनाया, आपने कॉल करना शुरू कर दिया, तो वेट फॉर इट. मैं अभी गाना लगा रही हूँ, कॉल्स में थोड़ी देर के लिए होल्ड पे हूँ, बट देन आई विल टेक योर कॉल आफ्टर. मेरे कॉल्स यहाँ पे फ्लड हो रहे हैं, बट विच इज़ ग्रेट, आई लव इट. थैंक यू फॉर बींग सच एन इंटरेक्टिव ऑडियंस. बट हियर वी गो. मेरा नंबर है 972-235-5555. एंड द गिव अवे क्वेश्चन इज दिस सॉन्ग, एंड यू हैव टू कॉल मी अप एंड टेल मी व्हाट इज द हिंदी सॉन्ग फॉर दिस वन. ओके, सो हियर वी गो.

0: गाइस कॉल पे तो नहीं, मतलब रेडियो शो पे बने रहिए, क्योंकि 8:30 को हमारा सेकंड गिव अवे होने वाला है आफ्टर दिस ब्रेक. आई एम रियली एक्साइटेड. एनीवेज गाइस, एक छोटी सी अनाउंसमेंट बिफोर वी गो इनटू अ ब्रेक. अगर आप कभी भी किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में फंस गए हैं, देन ओमर ख्वाजा विल कम एंड फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. Dealing with insurance companies are very, very stressful. You need an attorney that makes sure that you are very well compensated. And aapko paise bhi nahi dene padenge jab tak aap jeet nahi jaate hain. So for a free consultation, call 469-300-5046 or visit attorneyomer.com. Guys, hum thodi der mein ek break mein jane wale hain. Aur isiliye main aapko ek, I want to play a good song, but I don't want to like, कीप सेइंग दिस. क्या बोलते हैं, मैं गाना बीच में ना काटना नहीं चाहती, क्योंकि 45 सेकेंड में ब्रेक शुरू हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा, फिर वो गाना भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे. इसीलिए हम थोड़ी सी बातें करते हैं. आई वॉज टेकिंग कॉल्स एंड दिस इज़ द टाइम फॉर यू गाइज टू कॉल मी, विच इज़ वेदर गर्ल्स एंड गाइज कैन बी फ्रेंड्स. एंड आई जस्ट हैड अ कॉल फ्रॉम जिमरान, हु इज़ माई रेगुलर लिसनर एंड कीप्स अपडेटिंग मी अबाउट द न्यू मूवीज एंड द न्यू सॉन्ग्स दैट कम आउट. ही सो अप, ही इज़ लाइक सो like up to date on his Bollywood music, and he tells me, you know AP, there's a new song that came out, you know there's AP, there's a song that came out like just today, and I'm like, okay, yes Zimran, thank you for letting me know. So apparently ek aur gana release hone wala hai, Hot Rasile, but wo dusri movie ka hai, it's not from Cocktail 2. When it releases then we'll play it for you, but until then enjoy.
1: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में. पीएमजे जूल्स.
2: बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन फ्रॉम 20th जून सैटरडे ऑनवर्ड्स एंड गेट एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्साइटिंग सेलिब्रेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज टू विन ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसेस. पीएमजे जूल्स, ट्रेडिशन क्राफ्टेड, स्टाइल डिफाइंड.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
11: ये क्या होता है?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
14: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
15: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
16: लिया.
15: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
16: नहीं आया.
15: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972 863 9772. That's 972-863-7772.
13: Visit www.senadainc.com today.
16: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hain. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutton. Rich, bold, no compromises.
17: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai. New on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao. Flavor hum sambhal lenge.
18: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
19: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.

Friends, we are back. हाँ जी, it is the time because this is your lucky week. जैसे मैंने आपको बोला था, मैं इस पूरे हफ्ते एक नहीं, two giveaways करने वाली हूँ. One and two giveaways. पहला giveaway तो unfortunately निकल चुका है. आपको $10 का gift card नहीं मिलेगा. लेकिन ये वाला giveaway भी बहुत सही है because free food is always amazing. Free food is free food, guys. You know, it doesn't matter whether it's pizza और इट्स दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. यस गाइस, दैट इज व्हाट यू कैन विन इफ यू विन दिस गिव अवे. ठीक है, इट्स द सेम क्वेश्चन, नॉट द सेम क्वेश्चन बट द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. भाई कॉपी कैट सॉन्ग है, मैं गाना बजाऊंगी, आप मुझे उसको बताइए कि वॉट इज द Bollywood version of that song. And if you want to sing it for me, extra bonus points. Actually, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, बहुत सारा प्यार मिलेगा, लेकिन bonus points, प्यार भी बहुत rare commodity है आज के ज़माने में, तो वो भी ले लिया करो. ठीक है, जब मिलता है ले लो. ठीक है, ऐसा नहीं है. Anyways, but make sure that you guys have not won this giveaway in the last 1 month. And you have to wait for 24 or 48 hours for us to reach out and give you the gift card. And then please redeem it in the next 7 days. Okay? So remember, this is for Flavor Lounge dine-in only, not take-out. So guys, are you ready for the question? इस बार ये 8:30 वाला question बहुत सही होता है. 8:30 क्या, 8:50 बज चुका है, almost 8:47 हो चुका है. लेकिन बहुत अभी तक मेरे को calls नहीं आई है कोई. तो अभी आ जाएंगे. Don't worry. Are you guys ready? And 5, 6, 7, 8. No, actually, we should do a counting backwards. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Buffalo soldier.

0: वेरी नाइस गाइस, आई लव दैट ट्यून। अभी एक छोटा सा गाना और सुनते हैं एंड देन एक्चुअली गाने का टाइम तो है नहीं, 1 ही मिनट बचा है एंड आई डोंट वांट टू रूइन योर म्यूजिकल एक्सपीरियंस। तो तब तक के लिए आई विल जस्ट से गाइस, आई एम सो अमेज्ड विद ऑल द रिस्पॉन्सेज आई एम गेटिंग फ्रॉम माई पोल एंड आई हैव ऑल्सो पुट दैट ऑन माई इंस्टाग्राम जस्ट इन केस अगर आपको कॉल नहीं करना है एंड यू जस्ट वॉन्ट Just tell me your answer, yes or no, and you don't feel like making the call because I know making the call is like an extra effort. I totally get it. You can follow me on Instagram at ippi.music, ippi.music, and then the poll is on my story. And if you've joined my channel, I also put it on my channel. I put regular updates. So it'll be really fun if you guys want to answer my poll. We are asking whether girls and guys can be platonic friends or no, or is there a secret crush? हमेशा कुछ ना कुछ किसी के अंदर फीलिंग होगी कि नहीं होगी। और आप वापस आएंगे ना ब्रेक से, देन आई टेल यू माई स्टोरी। मैं आई एम लाइक कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन द टू बिकॉज ऑन द वन हैंड आईव हैड अ लॉट ऑफ गाय फ्रेंड्स एंड ऑन द अदर हैंड आईव ऑल्सो हैड।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
4: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
3: Renew?
4: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
3: What better way to celebrate than with something timeless?
4: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Papa, Father's Day pe kya gift chahiye?
6: Beta hai tu mera. Tum log saath baith jao. Yehi kaafi hai.
7: Aur wahi to sabse bada gift hai. All that your father needs is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining, and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
8: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
9: हाँ।
8: घर रिलोकेट करनी है?
9: हाँ।
8: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
9: हाँ भाई हाँ।
8: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
10: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
11: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahun.
12: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
11: Kaise?
12: Page 3 eatery?
11: No, not another restaurant again.
12: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
11: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
13: Page 3 eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
14: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 Or visit astrologerishwar.com.
15: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy. easy, live safe with duck time.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
9: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
17: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
0: Hello guys, we are back and y'all are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM and this is An Evening in Dallas with Ippy the Hippie, guys. Yes, jaane se pehle we were taking a little poll on whether girls and guys can be friends and I got a lot of mixed responses. So if you guys want to tell me your response whether girls and guys can actually be platonic friends or not, then you should call me and tell me at 972-235-5555. And if you don't want to share your voice and don't want to have a long conversation, because kai baar kya hota hai, aap mujhe call karte ho and we get into this beautiful conversation and I love it, kyunki mujhe baatein karna aise hi bahut pasand hai. So if you don't want ki bhaiya ye to bahut baatein karti hai, I don't want to have such a long chit chat with this random person that on air, then you can just follow me on Instagram and share your answer on my Insta story, which is actually a poll there too. Anyways guys, baatein kam काम ज्यादा, एक्चुअली बातें कम गाने ज्यादा, है ना. लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मेरे को करनी पड़ती है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब. बाय द वे, आप लोगों ने कभी भी पेज थ्री इटरी में खाना खाया है? फ्रॉम सिजलिंग कबाब्स एंड फ्लेवरफुल चाट टू फ्यूजन बाइट्स एंड रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, दे हैव एवरीथिंग. इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस पेज थ्री इटरी देन यू शुड गो बिकॉज दे आर लोकेटेड एट हब 121. And this is where bold Indian street food meets modern flair. Brunch, lunch, dinner, date night, foodie meetup, kuch bhi ho, Page 3's got the right masala and energy and vibrant vibes for you. So visit Page 3 Eatery at Hub 121 or explore more at page3eatery.com. Let's listen to this one song and we'll come back and talk some more.

भाई हमारे पास तो काम, वीजा के चक्कर, रेंट देना, इसके अलावा टाइम ही नहीं बचता कि हम चार चार लोगों को एक साथ कैसे डेट करें. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड हु एवर इज गिविंग दिस एडवाइस. आई एम श्योर यू आर वेरी वेरी वेल्थी एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फैमिली मनी, दैट्स वाई यू कैन अफोर्ड टू डेट फोर पीपल एट द सेम टाइम. बट हियर इज माई स्टोरी. वेन आई ट्राइड माई हैंड्स एट दिस ऑनलाइन डेटिंग स्टफ एंड आई वॉज, चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं. मतलब मेरी उम्र तो हो गई थी, मम्मी भी बोल रही थी बेटा अमेरिका में चली गई हो, वहाँ पे हम रिश्ता तो देख भी नहीं पा रहे हैं, हमें तो बैकग्राउंड भी नहीं चेक कर पा रहे हैं, जीवन साथी वगैरह पे आता है वी कांट इवन चेक, तुम खुद ही ढूंढ लो. मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे और कहाँ से ढूंढूँ, आई वर्क विद किड्स, तो चलो ऑनलाइन ही डेटिंग ट्राई करते हैं, मे बी कोई ना कोई मिल जाएगा. तो ऑनलाइन डेटिंग पे गए. ऑनलाइन डेटिंग पे जाके मेरा मेरा ना सबसे, मैं बहुत टाइप के अलग अलग डेट्स पे गई हूँ, बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेट्स आई हैड वॉज विद दिस वन पर्सन. ही इज़ माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड आज की डेट में, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक माई बेस्टी, एंड कभी मुझे ज़रूरत भी होती है ही कम्स थ्रू. बट हमारे बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, नेवर एवर. वी एक्चुअली, सो इट्स सो फनी, मैं उससे डेट पे मिली, ठीक है, हम गए, ही वॉज अ वेरी नाइस जेंटलमैन. उसने बोला कि यू नो लेट्स मीट एट अ रेस्टोरेंट, खाना वाना खाते हैं. मैंने कहा ठीक है. वी वेंट टू दिस रेस्टोरेंट, वी आई थिंक इट वॉज अ सुशी प्लेस. आई डोंट रियली ईट सुशी, आई हैव अ थिंग अगेंस्ट सुशी, आई कांट ईट इट. सो आई सेड आई विल हैव द चिकन, यू हैव द सुशी, बट आई विल हैव डम्पलिंग्स विद इट. तो एनी वेज हमने खाना भी ऑर्डर किया. खाना वाना खा के फिर वो कहता है तुम चाय पियोगी मेरे घर पे? मैंने कहा चाय पी रहे हैं, हाँ चलो ठीक है चाय पी सकते हैं. चाय वाय पी, चाय वाय पी के वी वेंट होम, अपने अपने रास्ते चले गए. हमने ऐसी बात बात करी, जस्ट गॉट टू नो इच अदर. फिर उसके बाद हम ना 1 महीने 1.5 महीने तक मिले नहीं. फिर उसने बोला अच्छा मेरी मम्मी आ रही है, वुड यू लाइक टू कम एंड मीट माई मदर, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती है. मैंने कहा अच्छा श्योर. हमने ना 1 महीने से बात नहीं करी थी, वी जस्ट हैड दैट वन डेट लिटरली, जिसमें ना हमने हाथ पकड़ा, ना हग किया, ना कुछ भी, कुछ भी नहीं हुआ. वी जस्ट हैड अ वेरी नाइस क्लीन कॉन्वर्सेशन एंड देन आई वेंट होम आफ्टर दैट. तो उसने बोला उसके बाद सीधा आप मेरी मम्मी से मिलने आ जाओ. मैंने कहा यार ये होते शायद इंडियन लड़के, मतलब यू नो दे आर क्रॉसिंग 4-5 स्टेप्स, घर बुला रहा है मम्मी से मिलने, ठीक है मे बी ही इज सीरियस अबाउट मैरिज एंड ऑल दैट. मुझे ना टू बी ऑनेस्ट आई डेंट रियली लाइक हिम दैट मच, इन द सेंस लाइक नॉट एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर. ही वॉज अ गुड गाय बट ही वॉज नॉट रियली माई टाइप. बट आई वॉज लाइक ठीक है यार, आई मीन और कोई मिल नहीं रहा है, मम्मी से मिल लेते हैं, खाने पर बुलाया है, आई एम मिसिंग घर का खाना ऑल्सो. ऑनेस्टली मुझे तो बड़ी, मुझे खाने की लालच से ही बुलाया था उसने और मैं खाने के लालच से ही चली गई. तो मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं. एंड देन आई मेट हिज मॉम. फिर वो उसके घर पे जैसे ही मैं बैठी, मुझे बिठा के कहते ये मेरी मम्मी है. मैंने कहा अच्छा आंटी आपके लिए छोटा सा गिफ्ट वगैरह वगैरह दिया मैंने. तो फिर मुझे कहता है कि एपी आप बैठो मेरी मम्मी से बातें करो, मेरे को ना एक पार्टी में जाना है, मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, मैं वहां पे आधे घंटे घूम के फिर आता हूँ. मैंने कहा ओके, मैंने तुम्हारी मम्मी को, आई डोंट नो हर, ये क्या हो रहा है, तुम मुझे अपने घर पे अपनी मम्मी के साथ बिठा के तुम खुद पार्टी में जा रहे हो, लाइक व्हाट इज दिस इवन, लाइक आई हैड नो आइडिया हाउ टू डाइजेस्ट दैट. सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन. मैंने कहा नहीं यार आई विल बी नाइस. तो हम आंटी और मैं बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे. फिर आंटी कही थी देखा आप लोग भी ढूंढ लो, आप लोग, आपको एक लड़का ढूंढ लो, अक्षय को भी एक लड़की ढूंढ दो. मैंने कहा ओके आंटी हम ट्राई तो कर रहे हैं. देन आई डोंट रियली अंडरस्टैंड आंटी मेरे लिए, मेरी तरफ हिंट कर रही है या क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. फिर मेरे को 8 बज गए वहाँ पे. मैंने कहा आंटी मुझे ना भूख लग रही है, मेरे को सुबह काम भी करना है, हम लोग खा लेते हैं, पता नहीं अक्षय कब आएगा, 1-1.5 घंटा हो गया है वो आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है. तो आंटी कहती चलो ठीक है हम लोग खाना ख़त्म करके हम लोग खा लेते हैं, जब अक्षय आएगा तब देखेंगे. पता चले अक्षय थोड़ी देर में आ गया. फिर नहीं अक्षय नहीं आया एक्चुअली थोड़ी देर में. खाना वाना हमने खाना शुरू किया. फिर आंटी कहती है हाँ मैं तो अक्षय से कह रही थी आप दोनों एक दूसरे के लिए लड़की लड़का ढूंढ दो, अक्षय तो आप, मैं तो बोल रही थी अक्षय आपसे ही शादी कर ले, लेकिन वो तो आपको बड़ी बहन मानता है. मैंने कहा अच्छा ये तो उसने मुझे नहीं बताया कि वो मुझे अपनी बड़ी बहन मानता है, जबकि मैं उससे उतनी बड़ी हूँ नहीं, सिर्फ 1 साल ही बड़ी हूँ. तो मैंने कहा यार डेटिंग ऐप पे मिले, बन गई मैं बहन, तो मुझे एक छोटा भाई मिल गया डेटिंग ऐप पे. दैट इज़ माई रियली फनी डेटिंग ऐप स्टोरी. एनी वेज गाइज आई एम गोना कीप इट शॉर्ट. फिर मैंने बाद में अक्षय से पूछा, मैंने कहा अक्षय यार मम्मी से मिलने बुलाया है, उसके पहले बता तो देना चाहिए था ना मम्मी को, तूने बोला क्या? मुझे क्या पता तूने मम्मी को बोला है, ये तो मेरी बहन जैसी दोस्त है, मैं उसको बुला रहा हूँ. तो भाई इन माई ओपिनियन लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, लेकिन कई बार लड़कों को वो इस्टेब्लिश कर देना पड़ता है कि बहन है या फिर नॉट बहन है, यू नो व्हाट आई मीन.
So anyways, ये गाना सुनते हैं एंड देन वी विल कम बैक एंड टॉक सम मोर.

गाइज, अभी मुझे कॉल आई एंड समबडी ही सेड दैट ही डजंट बिलीव माई स्टोरी इज रियल बिकॉज कोई ऐसे बहन नहीं बना सकता. भाई, इट इज हैपेंड, इट इज ट्रू, और ये मेरी खुद की स्टोरी है. मैं झूठ नहीं बोलती, एटलीस्ट इस बारे में तो नहीं बोलती. वैसे मैं बहुत चीजों के बारे में बोलती हूँ, फालतू चीजों के बारे में, बट ये जो एक्सपीरियंसेस है ये तो बहुत सच्ची, एकदम ट्रू, फर्स्ट हैंड अकाउंट है ये बिल्कुल. एनीवेज गाइज, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई जो अच्छे लड़के होते हैं, जिन लड़कों के अच्छे मॉरल्स होते हैं या गुड टीचिंग होती है, दे डोंट डेट 4-5 गर्ल्स एट द सेम टाइम. वेल, आई मीन आई वुड लाइक टू से दैट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट डू दैट, बट देर आर सो मैनी पीपल हु स्टिल डू दैट. दे कैन हैव ग्रेट जॉब्स, दे कैन हैव कमिंग फ्रॉम लाइक ग्रेट फैमिली बैकग्राउंड, ग्रेट स्कूलिंग, ग्रेट कॉलेज, एंड IT में जॉब करें, मेकिंग ओवर 100K अ ईयर, ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट दे आर स्टिल काइंड ऑफ डूइंग दैट स्टफ. एंड गोस्टिंग इज अनदर थिंग दैट आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हेट. अर्लियर इन माई सेगमेंट टूडे वेन वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, आई हैड दिस रियली इंटरेस्टिंग कॉल विद संतोष, हु हैड कॉल्ड मी अप अर्लियर, एंड संतोष हैड ब्रॉट दिस थॉट मेरे दिमाग में. मैंने कहा मैंने पहले बार इस बारे में सोचा नहीं था. ही सर, आजकल के ज़माने में रिलेशनशिप्स जो है ना, दे आर वेदर दे लास्ट और नॉट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कन्वीनियंस, एंड इट्स लाइक अगर आपकी सिचुएशन है वे यू कैन मेंटेन अ वेरी फेवरेबल रिलेशनशिप एंड यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक अदर थिंग्स बिसाइड्स लव, प्यार, मोहब्बत, बिसाइड्स ऑल दैट फीलिंग्स, इफ यू हैव एवरीथिंग दैट काइंड ऑफ fits the picture, that is what makes people go into long-term relationships and that is what makes people carry on those relationships. Lekin hum log ki situation har 5 saal mein badal jati hai yaar. I mean, think about it. Every 5 years, sabki life kuch na kuch change hota hi hai. Either your job changes, maybe you have kids, maybe your friend circle changes, maybe you as a person change. I have changed so much in the last 5 years. I mean, I don't even recognize myself. 5 saal pehle main kuch aur thi, aaj main kuch aur hu. So I feel like, you know, relationships also have to progress and move on with that. And that does not mean you find a new person. It just means you have to find a new way to get attached or re-love your person, whoever that is, whoever that may be. Or maybe if you haven't found them, hopefully you will find them very soon. Anyways, this is a song.

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
1: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
4: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
7: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com। कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
12: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
10: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2। Starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna. Get ready as the perfect cocktail mixture with Cocktail 2, releasing on the 19th of June at theater near you.
13: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

कैसे हैं आप सभी लोग? यू ऑल आर लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 104.9 एफएम एंड दिस इज योर फेवरेट बेस्टी एपी द हिप्पी. दैट्स राइट भाई, लास्ट का आधा घंटा, एक्चुअली 20 मिनट ही हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि बातें कम करूं, गाने बहुत बजाऊं. तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट सॉन्ग. Dallas, the wait is over. PMJ Jewels is now coming to Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. Explore stunning gold, diamond, and bridal collections for every celebration and milestone. Join the grand opening celebration starting June 20th and enjoy exclusive offers, exciting festivities, and chances to win beautiful jewelry pieces. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghatamani, PMJ is a name trusted by generations. Visit PMJ Jewels Frisco on Main Street and discover jewelry that tells your story. ठीक है, अगर आप जाते हैं 20th को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, तो उनका ग्रैंड ओपनिंग है. पता नहीं, शायद आपको प्राइज ही मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन उनका ग्रैंड ओपनिंग है फ्रॉम 11 a.m. to 2 p.m. on the 20th. 20th क्या डे है भाई? 20th is a, भाई कौन सा डे है? 20th is a Saturday. तो Saturday है, वीकेंड है. Go on the grand opening. लड्डू शड्डू तो मिल ही जाएगा यार, पूजा वूजा होगी, ग्रैंड ओपनिंग होता है, पूजा वूजा तो होती है ना. सो गो चेक इट आउट. भाई जाने से पहले वी वर टेकिंग अ पोल वेदर अ गर्ल एंड गाय कैन बी फ्रेंड्स, प्लेटोनिक फ्रेंड्स. I have to say, guys, out of all the calls that I got, it's a tie. You know, there is, I feel like, my personal opinion, if you ask me, I think girls and guys can be friends, can be absolutely platonic friends, as long as there is clear communication, one, from both sides, theek hai? Number two, आप पहले से अपनी इंटेंशंस डिसाइड कर लो, क्योंकि कई बार व्हेन एक बंदा या बंदे के साथ क्लोजनेस, आप रोज मिलते हो, बातें करते हो, कई बार फीलिंग्स आ ही जाती हैं. एज लॉन्ग एज आप उसको सोच नहीं रहे हो ना उन फीलिंग्स के बारे में, एज लॉन्ग एज यू नॉट एक्टिवली थिंकिंग अबाउट इट, देन फीलिंग्स नहीं आएंगी. लेकिन अगर आपने फीलिंग्स को एक सेकेंड के लिए भी थोड़ी सी भी जगह दे दी ना, देन दैट बिकम्स इन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज काइंड ऑफ हार्ड टू गेट आउट ऑफ. सो द थिंग इज वेदर यू आर फीलिंग दैट आर नॉट. मेरे जितने भी बचपन के दोस्त, नहीं बचपन में तो खैर इतनी आइडिया नहीं होता था हमको, बट वेन आई ग्रू अप एंड माई अडल्ट फ्रेंडशिप्स, लाइक माई ग्रोन अप फ्रेंडशिप्स with people after I turned 18 or something, all my guy friends, तो हम लोग पहले से ही बात कर लेते थे यार, we are hanging out a lot, हम लोग बातें बातें कर रहे हैं, we are hanging out almost every other day. I just want to make it clear that is this a thing that is going to happen in the future, should I be prepared for it? And then I've literally had this conversation with one of my really close friends. उसने मुझे एक बार पूछा, मैंने बोला नहीं यार, I like talking to you, we have this conversation, we have healthy discussions and debates, but I don't see you as a long-term partner. Just because we are having a conversation and we share common background doesn't mean that we have to be in a relationship, या फिर हमारे बीच में कोई ऐसा प्यार व्यार कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. Let's just be friends. हमने पहले ही decide कर लिया. फिर वो कहता है हाँ ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था, बिकॉज मैंने तेरे को डेटिंग ऐप पे देखा. मैंने कहा हाँ, मेरे को भी डेटिंग ऐप पे तू दिखा, मेरे को दिखेगा ना अगली बारी लेफ्ट स्वाइप करियो, स्वाइप बिल्कुल मत करना, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट कंफ्यूजिंग. कहता है हाँ ठीक है, डन, एस्टैब्लिश्ड. दैट इज हेल्थी कम्युनिकेशन, एंड दैट्स वेन यू कैन हैव अ प्लेटोनिक फ्रेंडशिप, बिकॉज यू हैव एस्टैब्लिश्ड. या फिर बहन बना लो, मतलब जैसे अक्षय की तरह बहन ही बना लो सीधा. एनीवेज गाइस, ये गाना सुनते हैं, ये इसी थीम से रिलेटेड है.

गाइज, ये गाना मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करी हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू प्ले वन लास्ट सॉन्ग फॉर यू गाइज बिफोर आई साइन ऑफ फॉर टुनाइट. दिस इज इपी द हिपी ब्रिंगिंग टू यू अमेजिंग ट्यून्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. यस, दैट इज राइट. जॉइन मी टुमोरो फॉर माई लास्ट डे दिस वीक ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. एंड दिस वन गोज आउट टू सैयद जी. सैयद जी, आपके लिए अपना जुन ने, बिकॉज ही रिक्वेस्टेड अ बंगाली सॉन्ग. तो हम लोग, हिंदी रेडियो है तो हम मिक्स करके गाना बजाते हैं. सो व्हाई नॉट, हियर यू गो.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
7: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
8: Hi, hello, namaste. मैं हूँ काव्या और आप सुन रहे हैं 104.9 Phoenicia. घड़ी ने 10 बजा दिया है, शहर धीरे धीरे शांत हो रहा है, लेकिन हमारी महफिल भी शुरू हो रही है. तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या काम करके ये बहुत नींद आ रही है या इंतज़ार कर रहे हैं नींद के लिए, तो अगले 2 घंटे हमारे आपके साथ रहेंगे. और चलिए शुरू करते हैं हमारे ये म्यूज़िक और बातों के ये खूबसूरत सफ़र. रात अभी बाकी है मेरे दोस्त.

वैसे दोस्तों, बुधवार है आज ख़त्म होने की, जो हफ्ते के कुछ पलों ख़त्म हो चुके और कुछ दिनों बाकी हैं। तो अभी तो सोचने का टाइम है कि यार, हम ये हफ्ता भर करते क्या है? ये दिन के 4 घंटे कब ख़त्म हो जाते हैं या पता ही नहीं चलता है। तो आज बात करते हैं कि ना, आपका सबसे ज़्यादा वक्त आखिर जाता ही कहाँ है? मोबाइल स्क्रॉलिंग, यानी तो ऑफिस वर्क, यानी तो यार आज खाना क्या बनाना है? या सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, अभी लंच, लंच क्या बनाना है यार? अभी कौन सा सब्जी बाकी है फ्रिज के अंदर? अभी डिनर क्या बनानी है? ये ही हो जाता है सब सोचते सोचते कि क्या खाना खाना है। यू नो, जिंदा तो रहना है ना हेल्थ के हिसाब से। यानी तो या किसी का चुगली करना, या गॉसिप में टाइम जा रहा है, यानी तो अभी लाइफ के टेंशन, यू नो, कितने सारे टॉपिक्स होते रहते हैं हमारे दिन के यार। तो लेट्स सी दैट वट एवर, यू नो, हम कितने टाइम जाता है हमारा, दिस 24 आवर्स, वट एंड ऑल वी कीप डूइंग इट। लेट्स थिंक अबाउट इट, एंड इफ यू वॉन्ट शेयर समथिंग टू मी, प्लीज टू कॉल टू अ फनीशियर रेडियो 972-235-555 एंड 555।

बात कर रहे थे कि पूरा दिन किस किस में हम बिताते हैं, तो मेरे दोस्त से मैं बात की रही थी एंड देन शी वॉज लाइक, अरे यार सच है यार, मेरे ना पूरा दिन ये क्या खाना बनाया है, अभी नेक्स्ट क्या बनाते रहे, हम हर दिन यही सोच में पड़ जाते हैं। क्योंकि यू नो हम जब इंडिया में रहते, हमारे मम्मा पापा ना गरम गरम पराठे बना के देने, यानी तो कुछ ना कुछ तो एकदम फ्रेश खाना मिल जाता था। मैं सुबह सुबह यानी तो आफ्टरनून हो या रात हो, ना एकदम बिंदास बैठे रहो मम्मी के साथ, गुपचुप गुपचुप करते रहने, गरम गरम खाना मिल जाता है तुम्हें। बट वेन यू एक्चुअली बी इंडिविजुअल लाइक इंडिपेंडेंट, कमिंग टू यू एज एंड देन यू नो लीडिंग योर लाइफ लाइक हाउ योर पेरेंट्स वर टेकिंग केयर ऑफ यू, अभी आपकी जिम्मेदारी है खुद का देखने का, तो फिर जब आपके लिए सुबह उठना इज़ अ बिग टास्क, क्या खाना है वो मम्मी के स्वाद जैसे बनाने के ट्राई करना इज़ ऑल स्ट्रगल यू नो, तो इसी चक्कर में ना तो हमारा दिन वही ख़त्म हो जाती है। तो जस्ट इमेजिन दैट हाउ वुड आर लाइक मम्मियाँ कैसे हमारे लिए इतना कुछ करती, लाइक शी टेक केयर ऑफ अर्स एंड और उनके लिए भी यू नो, सो दैट्स हाउ आर टाइम स्पेंड। तो ये रहा अभी अगला गाना।

समर की मौसम है, गर्मी की छुट्टियाँ। तो अभी मेरे को याद आया ना, समर छुट्टी में हम कितने सारे गेम्स खेलते थे बचपन में। वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग, यू नो। लेकिन अभी ना आजकल तो ये बच्चे लोग भी ना ये मोबाइल फ़ोन में रहे थे। वो फुटबॉल खेलना हो या तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो को क्रिकेट हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज़ ऑन मोबाइल। यार खेलना है तो ना बाहर का, वो गर्मी वाली फीलिंग तो आनी चाहिए ना। ये जो हमारी गिल्ली डंडा हो या खो-खो या पकड़म पकड़ाई, या वन ऑफ माय फेवरेट वाज लाइक शटल बैट, साइकिलिंग, स्विमिंग। लाइक सुबह समर में ना, सुबह सुबह मम्मी मेरे को 6 बजे उठा के ना स्विमिंग क्लास लेके जाती थी। पर बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वो गर्मी में वो जब हमें वो ठंडा पानी में डुबके मारते ना, वाह वो मज़ा ही कुछ और है। तो वैसे ना बहुत कुछ स्किल्स हम पा भी लेते हैं हमारे बचपन में, यू नो। तो आगे जाके भाई बहुत चीज़ों में भी हम नो हमारे स्किल्स को अप्लाई कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। हियर वी गो ऑन द नेक्स्ट सॉन्ग।

सैयद जी, मैं आपको पूछना ही भूल गई कि कैसा लगा हमारे गाना। आप जो कॉल करके पूछ रहे थे ना कि आप भी अच्छे गाने डालिएगा करके, प्लीज लेट मी नो हाउ इज द सॉन्ग्स गोइंग ऑन।

वैसे दोस्तों एक बात बताइए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ना पूरे दिन सोचते रहते हैं कि यार बस आज जल्दी सो जाएंगे, और फिर रात के 10 बज जाते, 11 बज जाते, और फिर वहाँ पर एक अचानक से एक बड़ी सी एनर्जी आ जाती है, जहाँ पर यू थिंक कि फिर शुरू हो जाते हैं कि यार ये दूसरा रूटीन आ जाता है आपके अंदर, ये बस और एक रील देख लेते हैं, फिर और एक रील, फिर पता चलता है कि यार आधा घंटा निकल गया है। फिर कुछ लोग रहते हैं जो फ्रिज खोल के देखते रहते हैं कि यार शायद कुछ मिल जाए, क्रेविंग्स जो रात के टाइम पे होते हैं, या कोई और ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में चीज़ें ऐड कर रहा होता है, फिर वो शायद कभी ऑर्डर ही ना किया हो। और लाइक जैसे कुछ होते हैं कि पुराने फोटोज़, आई एम वन ऑफ देम एक्चुअली, जो ये पुराने फोटोज़ देखते रहते हैं और फिर यादों को ऐसे नॉस्टैल्जिया देखते रहते हैं, यार हम इस टाइम पे यहाँ पर ऐसे थे, यार ऐसे मेरे को बहुत मिस कर रही हूँ, ऐसा ऐसा वाला फीलिंग आता है। फिर ऑल दिस नाइट पूरा खींच जाती है, फिर ये आपका ये जो जल्दी सोने का वो रहता है ना प्लान, ये चौपट हो जाती है भाई। चलिए अगले गाने सुनते हैं वैसे ही।

दिल का जो हाल है। वैसे मुझे बस इसे याद आ रहा था। ओके, बाय द वे, दिस इज़ माय थर्ड शो एंड देन मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है इससे बात करते और ऐसे अगले अगले गाना डालते हुए। तो मेरे को बस ये एक छोटी सी याद आई कि अगर मेरे को अपने छोटा मेरा छोटा वर्जन जो ज़रा सोचिए कि अगर आप आज वाली अंडरस्टैंडिंग और ये वाली एक्सपीरियंस यानी तो ये वाली जो मेच्योरिटी है हमारी अभी आपके 15 साल या 20 साल के वर्षन के सामने यू ऐसे जाके पूछे कि अभी सबसे पहले बात क्या करेंगे आप उनके साथ, क्या हो सकता है या आप कुछ जज लाइक कुछ एडवर्टाइज आई मीन एडवाइस करने वाले हो या नहीं तो यू वांट टू टेल हिम समथिंग, या टेंशन मत लो बस सब ठीक हो जाएगा। ओके सो मैं बोलूँगी यार जो लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे आपको या यार मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन या आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो उनके लिए, बट यू नो व्हाट इतने साल के बाद कुछ साल के बाद तो वो लोग आपके नाम भी याद नहीं रहेंगे बाय द वे, बट बहुत लोग रहते हैं जो आपके मन और दिल में बस जाते हैं इवन इफ दे आर नॉट अराउंड यू बट यू स्टिल थिंक अबाउट दैम, जो आपके लिए सोचते हैं दोज आर द वंस द इम्पॉर्टेंट पीपल।

हम बात कर रहे थे, अगर हमारा बचपन का वर्षन अगर हमारे सामने हो और हमको मौका मिले कि हम उनको क्या बता सकते हैं, बचने के लिए कि ये मत करना, ऐसा मौका मिला हमको दैट वी कैन चेंज. तो मेरे को बस ऐसा थॉट आया था कि क्या पता अगर हम उनको बोल सकते यार थोड़ा सा तो पैसा बचाना शुरू कर ले यार, थोड़ा सा करके. अभी आजकल हम इतना मेच्योरिटी आ गया माइंड में कि लगता है कि थोड़ा सा हम पैसा कलेक्ट करके हम वो खरीदेंगे ये खरीदेंगे लगता है. उस टाइम पे तो हम तो मम्मा पापा के पैसे में ना बहुत कुछ खर्च कर लेते थे. अभी जब हमारा टर्न होता है ना ये कमाने का, तब इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है यार, एक एक रुपये या एक एक डॉलर खर्च करने के लिए भी ना, आगे नीचे लाइक बैक एंड फ्रंट यू कीप थिंकिंग दैट क्या से यार खर्च करे करके. या और एक थॉट था कि क्या कुछ एग्जाम के एक दिन पहले तो यार पढ़ाई शुरू मत करना, या पहले ही कर लो, थोड़ा IAS ऑफिसर भी या कुछ तो बन जाओ यार. ये थॉट्स आई वाज एक्चुअली थिंकिंग, क्योंकि ना व्हेन इट कम्स टू स्टडीज हर कोई उस जमाने में सोचता है यार ये डॉक्टर इंजीनियरिंग सिर्फ यही होता है करियर के बेस में, कुछ होता ही नहीं पढ़ाई. बट ये कॉमर्स को भी ना इतना ढीला हल्का ले लेते थे ना, मैनी पीपल अभी यार चार्टर्ड अकाउंट या क्या क्या बिजनेस लोग बन जाते हैं यार. कॉमर्स कॉमर्स भी कोई कम चीज़ नहीं है यार, मैनी मैनी पीपल गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट. सो या जस्ट कीप इन थिंकिंग हमारे करियर बेस में मैनी ऑप्शन है, जस्ट देखिए अभी कितना लाइफ में क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है. चलिए चलते अगले गाने पर.

0: क्या बढ़िया गाना था. दिस इज लाइक यू नो माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ देम. तो सच को ना, ये जो बचपन और ये जवानी में जो हमारा ये सबको यू नो लगता है कि नो कि बड़े होने के बाद ये ना सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, हम कमाने लगेंगे, क्या क्या नई चीज़ खरीद सकते हैं करके. लेकिन यू नो व्हाट, पता चलता है कि ना प्रॉब्लम भी अपग्रेड हो जाती है और ये जो हमारा ये प्रॉब्लम्स भी आते रहते हैं. तो या एक टाइम पे था कि जब हमारे मार्क्स की टेंशन थे, यार मम्मी से पिटाई, डैड से पिटाई लगेगा यार.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
4: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
5: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
6: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
7: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
8: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
0: वेलकम बैक दोस्तों. तो हम बात कर रहे थे कि बचपन और जवानी के जो हम ये सोच सोच रहे थे कि यू नो कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे जैसे हम बड़े हो जाएंगे, लेकिन यू नो पता चलता है कि यू नो प्रॉब्लम्स भी अपग्रेड हो जाती है जैसे कि हमारी एज बढ़ती रहती है यार. तो उसके बाद शादियाँ का, फिर बच्चों का, फिर बुढ़ापे का, यू नो मस्ती होता ही नहीं रहे इतना हम सोचते रहेंगे. तो एक टाइम होता था जब हम ना मार्क्स का टेंशन लेते थे कि यार मम्मी पापा से पिटाई मिलेगी, अभी हम मार्क्स कम आए तो मैथ्स का या फेल हो गया ऐसा वगैरह. देन अभी आजकल अभी हो रहा है कि है ना ईएमआई की टेंशन है, एक टाइम पता है अटेंडेंस का, और अभी हो रहा है मीटिंग का डेडलाइंस का प्रेशर, ये सबमिशन वो सबमिशन, यू नो ये सब फनी बातें होते हैं. लेकिन जैसे कि हमारे बचपन में से जैसे जल्दी जल्दी होते थे, अभी अभी जल्दी होते हुए भी यू नो बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ते रहते हैं, वो टेंशन होती रहती है. चलो जल्दी अगले गाने पे.

यार जब हम छुट्टी लेते हैं ना यार, मी टाइम लेते हैं जरा, एक छुट्टी लेकर करके फिर हम शुरू करते हैं यार, एक नया चेंजेस लाएंगे जिंदगी में। जरा हम कुछ जिम विम करेंगे, अच्छा बढ़िया खाना खाएंगे, रूटीन खाएंगे ना, जैसे कि ये जैसे कि ये एक्टर्स लोग खाते हैं ना खाना, एकदम हेल्दी और अपना ये शुगर स्पाइक को चेक करते हुए खाते ना, वैसा एक एक अच्छा लाइफ हम चलो बनाएंगे करके। हम अलार्म डालने लग जाते हैं फिर 5 बजे का अलार्म सेट हो जाता है, फिर हो जाते हैं 5 बजे से लेके 6 बजे उठ, फिर 6:05, 6:10 ऐसे ना जाता रहता है, फिर हम उठते ही नहीं है। हमारे ये अलार्म से यही हमारा रिश्ता है कि हम कितना भी सोचे भाई हम सुबह उठेंगे करके, बट अलार्म से हमको सर साथ देता ही नहीं है उठने के लिए। सो वी हैव ऑल फेस दिस एवरी थिंग एंड लाइक जब हम अभी 12 बज रहे हैं यार ऑलमोस्ट, अब हम 12 बजने के समय भी नहीं सोएंगे तो ऑब्वियसली यही तो होगा हाल हमारा भी। चलो चलते हैं अभी अगले गाने के ऊपर आफ्टर दिस रियलाइजेशन।

वेलकम बैक दोस्तों। वैसे मेरे को अभी याद है ना, मैंने ये जो कपड़े का दिन आता है ना, वो हमारी जो वो प्लानिंग होती है ना, कपड़ा आज धोएंगे यार करके। वैसे मेरे को याद आया, मैं कपड़े को धोने डालकर लिटरली 2 दिन हो रहा होगा शायद, क्योंकि यार मेरे को टाइम इतना कम मिलता है ना, तो शायद मैं भूल जाती हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ तो एक काम है वो लग जाती हूँ मैं। फिर सोचो शायद मैं रात को अभी धोने के लिए डाल दिया, और फिर लग जाता है यार नेक्स्ट डे उसको सुखाने के लिए डाल देंगे यार ड्रायर में करके। फिर ड्रायर में डालने से पहले यार वो जो गीला वाला वो बू आती है ना, वो आ जाती है फिर, एंड देन आई एम लाइक ओह नो। ये एक एक टास्क हो जाती है कि जैसे अभी कपड़ा गीला है, अभी यू हैव टू पुट इट फॉर ड्राई, जैसे ड्राई हो जाते हैं गर्म, यू नो देयर इज वन ट्रिक, जब गर्म गर्म कपड़े होते हैं ना, उसी टाइम में आप फोल्ड करके रख दोगे ना, फिर ऐसे हाथ में थोड़ा हल्का से ऐसे से हिला दियो, फिर आपको आयरन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ यू नो दैट्स अ ट्रिक कि गरम गरम में ही आप अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं ना, कपड़ा फोल्ड हो जाता है। सो यूजुअली आई डू दैट थिंग। सो या जब ये कपड़े धोने का जब ये आ जाता है ना दिन, हफ्ते में एक बार, इट्स लाइक अ लॉन्ग डे, डज नेवर एंड्स अप। या नेक्स्ट

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
4: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में? सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 वेनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
5: वेलकम बैक दोस्तों, और आप सुन रहे हैं 104.9 फिनिशिया। तो अब हम बात कर रहे थे कपड़े धोने का दिन और हमारी प्लानिंग। कपड़े धोने से ज़्यादा ना मुश्किल का काम क्या है? उनको फोल्ड करना होता है। सो चूँकि वॉशिंग मशीन से निकलते ही एक मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है कि यार अभी और एक काम रह गया। और फिर एक सोफ़ा रहता है या तो एक काउच रहता है, जो यानी तो एक चेयर रहती है जो हमारा वो एक टेम्प्रवरी वार्डन हो जाती है, जहाँ पर यू नो ये वार्म जैसे कपड़े से ना लटकती रहती है उस चेयर के ऊपर। सो ये मेरे को ये एक चीज़ याद आया बोलने के लिए। चलिए अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट मज़ेदार गाने के ऊपर।

चलिए अभी थोड़ी देर में मेरे निकलने के वक्त आया है आज के लिए। वैसे निकलने के वक्त क्या मतलब, मेरे को भी याद आया कि ये ना मेरे को भी इस डोर सर्वर चेक करके जाना पड़ेगा। वैसे आपको भी आदत होगी शायद, जहाँ पर हम ये डोर लॉक किया होगा शायद जाके चेक करते फिर। दो आपने चेक किया है लेकिन फिर से, लेकिन 5 स्टेप आगे गए और फिर चेक किया, फिर 5 स्टेप पीछे। अरे मैंने चेक किया ना, बिकॉज़ यू नो दैट सेंस इज मैनी पीपल हैव। मेरे दोस्त लोग में भी मैंने देखा था बहुत नज़दीक से, कि मैं उनके घर में गई थी कुछ 3 महीने रुकने के लिए। एंड देन आई सी यार इसका भी डिसीज, मेरा डिसीज भी है कि ये करके। एंड देन अरे गैस बंद किया कि तरह जरा देखते हैं, क्योंकि देर मैनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट डायल्स रहते हैं बंद करने का। गैस ये बंद है या क्या है, या नहीं तो ये आग नहीं जल रही होगी, शायद गैस निकल रही होगी, या मेरा नाक काम नहीं कर रहा होगा, शायद गैस निकल रहा है नहीं आ रहा। ये दीज थॉट्स आते रहते हैं। फिर चार्जर निकालना है यार, तो क्या पता कि इंस्टाग्राम में रील्स में सब आते ना कि यू चार्ज डाल दिया हो, फिर रात भर फिर कहीं वो चिंगारी निकल के वो आग लगी हो वगैरह। यू कीप चेकिंग एवरीथिंग, बट चेकिंग इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग बिफोर यू गो फॉर स्लीप, कि यू सेफ फ्रॉम ऑल दिस कुछ बड़ा बड़े नुकसान ना हो जाए करके। सो बी सेफ एंड बिफोर यू स्लीप प्लीज़ टू हैव अ हैबिट ऑफ चेकिंग, बट नॉट टू मच। एंड साइनिंग ऑफ। चलिए आपको वैसे ही एक अच्छा सा बढ़िया गाना डाल देते हैं।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी जर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
4: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At ShopCompareInsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
5: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com, your 360 insurance solution.

जहे नसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ, फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरियोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: अब तू आ गई है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MMA बंटा है मालूम है ना? मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

बस आशिकों पे रहे।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी.
7: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact Desi.
1: तुम क्या मैरिनेट हुए बैठे हो यार?
2: PVS मॉल में बबीता आ रही है।
3: कौन बबीता यार?
2: कौन बबीता? बबीता कुमारी जहाँ पना? आपकी बेगम बब, मेरी भाभी, वही बबीता जिसके हाथ पे मेहंदी से लिखा जाना था बबुआ सिंह।
3: मोहब्बत देख गुड्डू, तेरे भाई के दफन होने से पहले अपना आखिरी सलाम देने चली आई
2: पूरी की।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
3: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी।

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

मेरा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: सर लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप ही बोलेगा।
2: बेटा वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में बच चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.
5: देख बेटा बच

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: Lights, mic, Bollywood, Funasia! Funasia!
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक थी?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था,

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Shubh din aa pahuncha hai. एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में. PMJ Jewels.
8: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
9: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
10: It's Lawson.
9: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
10: It's Lawson.
9: Daddy, what is the law?
11: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
12: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
13: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
12: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Oora can help us save up to 50% on our total debt. And the rest, we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
17: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
18: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
19: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
18: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
19: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
8: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident,
10: and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
20: सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम ऑन दिस लवली थर्सडे मॉर्निंग। इट्स द 18th ऑफ जून टुडे।

0: Whenever you hear any traffic updates around the DFW area or any accident reports out here, please remember they are sponsored by the offices of attorney Omar Khwaja. And in case you've been involved in a car or truck accident or a slip and fall incident, attorney Omar Khwaja will fight your case and help you get that compensation that you deserve. Dealing with insurance companies is stressful, so you need an attorney like attorney Omar Khwaja, who's going to make sure that you are compensated and you don't pay anything until you win. For a free consultation, please call them 469-300-5046. 469-300-5046, or visit attorneyomar.com. O-M-A-R. attorneyomar.com. We do have some more messages coming up for you, and those are from some of our sponsors as well as our advertisers. And we have to talk a lot today about PMJ Jewels. Those details coming up for you. Stay with me.
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: The Texas Super Kings are here, and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
4: Beta, 95% aaye?
5: Haan, mummy.
4: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
6: Mera?
4: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated?
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी.
8: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
9: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
10: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
9: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब.
11: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
12: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
11: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
12: वेट, वॉट?
9: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के decisions कोर्ट लेता है.
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
9: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace.

0: peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funasia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duct time.
1: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
2: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपर हिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2 स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना। गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2 रिलीजिंग ऑन द 19th of June एट थिएटर नियर यू।

0: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
0: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
2: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
3: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
4: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
5: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1. Mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2. Masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3. Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
4: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
10: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
12: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया।
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया।
12: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
1: Visit www.sanadainc.com today.
14: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
12: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: Me Too will be coming on right after me. You'll continue listening to the Fun Asia Network. That, ladies and gentlemen, is my show for today. I'll leave you my direct number before I leave the studios. It's 214-675-1754. 214-675-1754. It is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving. Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panchtara is now open at a new location in Allen. Wahi swad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhathe, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
5: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
6: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
5: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
6: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
7: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support, aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
8: Papa, Father's Day pe kya gift chahiye?
9: Beta hai tu mera. Tum log saath baith jao. यही काफी है।
4: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
10: मामू, देखो क्या हो गया।
11: ओ, क्या हो गया?
10: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
11: ओए, जर्मन का कमाल है।
10: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
11: ओ नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
12: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
13: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
14: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
15: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
16: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag.
15: और ऊपर से स्ट्रेस।
16: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
15: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
16: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
15: ये क्या होता?
16: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
17: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
18: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
19: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: हेलो नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज गपशप गली विथ मी टू और आप लोगों के साथ 12:30 बजे तक हूँ। एंड अ बिग शाउट आउट टू शबनम जी फॉर एन अमेजिंग स्टार्ट ऑफ द डे दैट शी ब्रिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस विथ अ मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो मंडे टू फ्राइडे 7 से लेकर 10 बजे तक। आई एम श्योर यू वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल एंटरटेन्ड एज वेल। आफ्टर ऑल आप फनीजिया रेडियो 104.9 सुन रहे हैं, इससे कम तो कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो बस वही करने वाली हूँ कंटिन्यू यहाँ पर। बहुत सारा म्यूजिक और ढेर सारी गपशप हमारी यहाँ पे, बस मैं शुरू करने को तैयार हूँ। यू परकशन आप सुन रहे थे इन द फॉर्म ऑफ तबला, दैट वॉज इन द सॉन्ग दैट वॉज जस्ट प्लेइंग। उससे मुझे याद आया कि मैंने ना हाल ही में एक, किसी ने मेरे साथ शेयर किया एक्चुअली, ये इंस्टाग्राम का एक रील शेयर किया जहाँ पर एक जनाब अपने सारे घर के जितने भी सामान है, जैसे कि वो टिन का डब्बा जिसमें चावल या वो सब स्टोर करते हैं, या फिर पेंट का डब्बा, वो सारी चीज़ें, ट्रैश कैन, ऑल दोज थिंग्स ही असेंबल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रम, यू नो क्या कहना चाहिए, ड्रम अरेंजमेंट। एंड देन ही प्लेड आर डी बर्मन्स म्यूजिक ऑन दैट पर्कशन दैट आर डी बर्मन वॉज सो वेल नोन फॉर। और उनकी तो बात ये भी थी कि भाई अलग अलग घर के चीज़ें या रोज़मर्रा की चीज़ें ही यूज़ टू ब्रिंग इन टू इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ हिज सॉन्ग्स, एंड दैट इज़ वॉट दिस गाय डिड। इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत वायरल हो रहा है ये, राहुल ड्रम्स 25, that's his handle name, just FYI. This is Gapshap Gali with me too.

मैं हूँ आपके साथ 12:30 तक, और कोशिश रहेगी कि आपके साथ कुछ ऐसी बातें और जिक्र हम करें कि मज़ा आ जाए आपको बात करके. तो ये जो नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस हमारा 11 o'clock के बाद का जो सेगमेंट होगा, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन जो जेंजी और मिलेनियल्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल था, और वही चीज़ हम रिवाइव करना चाहते हैं आप लोगों के साथ. सो स्टे इन टच विथ मी, नॉट जस्ट फॉर द कॉन्वर्सेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर 11, लेकिन उसके अलावा आपके रिक्वेस्ट, दैट इज़ ऑल्सो वट आई विल बी लुकिंग फॉर. क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने वो देखा है कि मेरी जो पसंद है जो गानों की ना, आई कीप ऑन प्रॉबेबली प्लेइंग ऑल ऑफ दोज सॉन्ग्स ओवर एंड अगेन, एंड इट्स ए कॉन्शियस एफर्ट फॉर मी कि मैं उससे स्टीयर अवे करूँ. तो ऐसे में जब आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है ना, तो बनती है बात. 972-235-5555 हमारे स्टूडियो का नंबर है. चलिए आगे, मैं ये जो गाना लगाने वाली हूँ ना, सूरज की रिक्वेस्ट पे आई एम गोना प्ले दिस वन. और सूरज ने कहा कि आज जनाब ने जो है छुट्टी ली है.

0: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
1: इट्स लॉसन।
0: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
1: इट्स लॉसन।
0: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
2: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
3: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At ShopCompareInsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
4: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469

0: guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
1: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
4: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Nahi dost, mazedar lagte hain. क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
11: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना।
12: गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2, रिलीजिंग ऑन द 19th of June एट थिएटर नियर यू।

क्या हो गया है वाला फैक्टर ना, जब कोई तसल्ली से पूछता है ना तो दिल को राहत मिलती है. एंड दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज व्हेन वी गो टू आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, राइट. और ऐसे में मैं आपको अगर बताऊं कि एक ऐसी जगह है जहां पे तसल्ली से डॉक्टर्स एंड नर्सेज आपको टाइम देते हैं, ताकि आपको आपकी जो परेशानी है आपके हेल्थ से रिलेटेड या एनी थिंग दैट यू आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट, वो आराम से आपको समझा सके. एंड दैट प्लेस इज पैशन हेल्थ प्राइमरी care. Do remember that, ladies and gentlemen, because at Passion Health Primary Care, you're not just a patient, वो आपकी फैमिली की तरह है. आपकी फैमिली की तरह आपसे तसल्ली से आपको बिठा कर आराम से आपके साथ बातचीत करेंगे. 5-10 मिनट वाली बातचीत नहीं, पूरे आधे घंटे या उससे के ज़्यादा का वक्त आपको लगे. सो फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली हेल्थ और आपके कम्युनिटी के लिए ये नाम ज़रूर याद रखें, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. और इसके अलावा जितने भी फिजिशियंस हमें सुन रहे हैं, एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियंस, साइकैट्रिस्ट, ये सारे डॉक्टर्स अगर फुल टाइम या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर कुछ सोच रहे हैं, देन सेंड योर रेज्यूमे टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com और टेक्स्ट दैम एट 217-454-4639 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. और बाकी सबके लिए पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम इज द वेबसाइट एंड यू कैन टेक्स्ट एट 214-666-6259 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. I want to tell you a little bit more about Kevin Bacon. क्यों बोलना चाहती हूँ केवन केविन बेकन के बारे में, that famous actor that I'm talking about. मैं इसीलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि अपना नाम बदलने वाले हैं. अब नाम क्यों बदलने वाले हैं और क्या रखने वाले हैं ये मैं बताने वाली हूँ इस अगले गाने के बाद. Let's get you this next track right here. और केविन बेकन goes back long, long, long time for me personally. नहीं, जानती पहचानती कुछ नहीं हूँ, बस ये है कि जब मैं यहाँ आई थी, यूएस में आई थी, तो पहली फिल्म मैंने उनकी देखी थी हॉलो मैन. 2000 की फिल्म थी, लेडीज एंड जेंटलमैन. ओ माय गॉश, दैट साइंस हॉरर फिक्शन दैट इट वाज.

You are listening to Funisha Radio 104.9 FM. Gupshup Gali mein hamari gupshup jane wali hai Kevin Bacon ki taraf se. Kevin Bacon ne naam badal liya hai. Aur wo kyun badla hai, wahi main aapko batane wali hoon. And he decided to turn over a new leaf, or should we say new legume, ladies and gentlemen. Kyunki apna bacon se bean, jo last name unhone badla hai, it is for a reason, ladies and gentlemen. And it is a funny idea and a cute play on his last name that he has decided on. और ये है क्योंकि he teamed up with Humane World for Animals, formerly called the Humane Society of the US, and it is for Beans Day, ladies and gentlemen. एक नया कैंपेन जहाँ पे लोगों को encourage किया जा रहा है कि मीट के जगह पे बीन्स खाओ, legumes खाओ, इसीलिए उन्होंने अपना नाम बेकन से बीन्स जो रखा है. एंड इट इज़ फॉर अ ब्रीफ टाइम दैट ही इज़ डूइंग इट फॉर दिस कैंपेन, एंड बेसिकली लोगों में एक अवेयरनेस जगाने के लिए कि फूड चॉइसेस, और एनकरेज करने के लिए कि भाई आप एम्ब्रेस करो प्लांट बेस्ड ऑप्शंस फॉर द सेक ऑफ बोथ एनिमल्स एंड द प्लैनेट. सो दैट्स द क्यूट यू नो प्ले विथ हिज लास्ट नेम फ्रॉम बेकन टू बीन दैट ही इज गोइंग टू बी फॉर अ लिटिल बिट. केविन बीन से मैं कुछ और नाम पे आऊँ आपके लिए, क्योंकि नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा था ये बात, और एक्चुअली बहुत हद तक तो वाकई में सच है. इसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको आफ्टर दिस नेक्स्ट ट्रैक फॉर ऑल ऑफ अस राइट हियर. और 10 years old, नाम लिखा था यार मैंने, क्या नाम है, क्या नाम है, अपनी हैंड राइटिंग खुद ही को नहीं समझ में आती है यार. आई थिंक इट वॉज दक्ष. Very specially going out to you, and thank you to all the young listeners who have started listening to us during the summer break.

Yes, all is well if you're listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Shakespeare ने कहा कि भाई नाम में क्या रखा हुआ है. बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, क्योंकि क्या है ना कि no one is perfect. Even अगर उनके नाम कुछ ऐसे हों, खुशी भी दुखी रह सकती है, आकाश भी ग्राउंड फ्लोर पे रह सकते हैं भाई. प्रथम जो है एवरेज स्टूडेंट है, लकी का बैड लकी बहुत खराब है, और आरती कभी टेम्पल ही नहीं जाती है यार, तो फिर वाकई में है कि नहीं कि नाम में क्या रखा है. वुडंट यू अग्री?

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
4: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
10: हाँ।
9: घर रिलोकेट करनी है?
10: हाँ।
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
10: हाँ भाई हाँ।
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
11: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
12: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
13: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
14: Beta, 95% aaye?
15: Haan, mummy.
14: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
16: Mera?
14: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
16: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. We got

0: minutes is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culver Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Superhit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Swag se karenge sabka swagat.
4: गपशप गली में आपका स्वागत है. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. आज की तारीख है 18th of June. हमारी घड़ी में इस वक्त बजने चले हैं 45 minutes past 10. सो मिला लीजिए अपनी घड़ी पे हमारे साथ और द पेस आल्सो मैच इट विथ अस, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट ऐसे ही आते रहें. लेकिन फिलहाल ये सेगमेंट है वेरी स्पेशली टू द मूवीज जो कि आज के दिन रिलीज हुई हैं. क्या भूल गए आप? अरे ऐसे कैसे भूल गए. कल ही मैंने आपको बताया ना कि भाई जो फीफा सेगमेंट मैं करती थी इस वक्त वो मैं आपके लिए वेरी एक्सक्लूसिवली आई विल ब्रिंग बिटवीन 12 to 12:30 बिकॉज देर इज सो मेनी अपडेट्स टू गिव और वो टाइम कम पड़ता था. तो मैंने सोचा कि यार मूव करते हैं एक पूरा आधा घंटे का सेगमेंट हम फीफा पे पूरा का पूरा जो है न्योछावर करने वाले हैं. सो येस गेट रेडी फॉर दैट एंड दिस एज वेल बिकॉज यू नो वॉट, बादाम खाना बहुत जरूरी है चीजें याद रखने के लिए. नहीं तो आपको याद होता बादाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे यू नो कल्चर का, देसी कल्चर का. हमने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है कि भाई बादाम भिगो के खाओ, यू नो स्किन निकाल के खाओ, तो उससे क्या होता है कि बेसिकली इट इज़ लाइटर ऑन डाइजेशन और इसीलिए ज़रूरी है वो भिगोना रात को. और उसे खाना ज़रूरी है क्योंकि मेमोरी अच्छी होती है. लेकिन याद रहे भिगोने का तो ही तो अच्छी होगी ना मेमोरी. बाकी रही बात इस फिल्म की, इसकी मेमोरी बिल्कुल साफ है कि भाई जब ये रिलीज हुई थी ये फिल्म आज के दिन इन द ईयर 2004, इट डिड नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन आज के दिन में इट्स ए कल्ट क्लासिक. आफ्टर ऑल दिल चाहता है कि बाद फरहान अख्तर की ये अगली फिल्म आ रही थी, पीपल वर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट. ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड देन ऋतिक रोशन की जो उनका जो पर्सोना था सुपर हीरो का, लव बॉय इमेज का, इट क्लैश्ड विथ हिज रीस्ट्रेन्ड एमलेस कैरेक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म विच इनिशियली सॉर्ट ऑफ एलियनेटेड द मूवी गोअर्स. लेकिन आगे चलते जब ये टीवी पे स्ट्रीम होने लगी ये फिल्म और रेडिट पे इसकी बातें चलने लगी तो लोगों ने रियलाइज किया कि यार कमाल की फिल्म है. लक्ष्य

यहाँ से 5 साल और पीछे जाने वाली हूँ एंड विल टॉक अबाउट अनदर फिल्म जो कि आज के दिन रिलीज हुई थी. बाय द वे, लक्ष्य रिलीज ऑन दिस डे इन द ईयर 2004. और अगर आपका लक्ष्य यूएस परमानेंट रेसिडेंसी है एंड इफ यू आर ऑन H-1B, F-1, L-1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा और ये आपके लिए एक डॉन्टिंग टास्क है, तो लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन सर्टनली हेल्प यू. और हम चाहते हैं कि आप इनके साथ कनेक्ट करें. नंबर आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा. आई कैन टेल यू दैट इफ़ यू हैव यू नो इफ यू आर सीकिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो info@seemamehtalawfirm.com पे एक ईमेल ज़रूर ड्रॉप करें. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा, family and employment visas, sperm labor certification and of course as I said US citizenship. तो जरूर आप इनके साथ कनेक्ट करें. अगर आपको जानना है EB-5 investor visa program के बारे में भी जरूर कनेक्ट करें. You can drop an email info@seemamehtalawfirm.com पे. All right, now that being said, let's take you 5 years back from 2004 aur le chalte hain is film pe jahan pe director ne second half of the film hero ko talashne mein lagayi in Italy. That is what the setup was, lekin actually Italy to jagah wo thi nahi. Actually it was Budapest in Hungary. You can figure that out. Agar aap dhyan se sunoge the crowd talking to aapko wo Hungarian language in the background sunai dega. आप सोच रहे होगे कि मैंने इतनी सारी बातें कह दी लेकिन फिल्म का नाम तो नहीं बताया. वो अब बताने वाली हूँ. इट इज़ हम दिल दे चुके सनम, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली एंड सलमान खान इज हु ऐश्वर्या राय एंड अजय देवगन वर लुकिंग फॉर इन इटली. आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 1999.

आज के दिन इन द ईयर 1999 हम दिल दे चुके सनम, इट लैंडेड एट द थिएटर्स एंड हाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. ए ब्लॉकबस्टर इन मेकिंग प्रॉबेबली, अभी कहना थोड़ा जल्दी है, लेकिन ये कह सकती हूँ कि शाहिद कपूर और कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म की का जो ट्रेलर है काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है. होपफुली इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर, दैट्स व्हाट वी कैन विश. और ये फिल्म जो कि आपके लिए फाइनेंशिया फिल्म्स लेकर आ रही है यहाँ पर, कॉकटेल 2 थिएटर्स में रिलीज होने वाली है कल June 19th को. लेडीज एंड जेंटलमैन, ए न्यू स्टोरी, न्यू इमोशन, brand new cocktail of love, friendship and heartbreak awaits you. Let's get going with that track jo kal hi release hua, mujhe kafi pasand aaya hai, isliye main aap logon ke liye play karna chahti hu. Bandhu 2.0. aur bandhu, kya aap jante ho ki Hollywood space mein kaun si films release hui thi aaj ke din? It was Toy Story 3 in 2010, The Karate Kid, that 2010 movie jisme wo Jackie Chan aur Jaden Smith the, global box office hit thi. Aur saath hi saath ek aur film jiska naam batane wali hu, it is Batman and Robin jo ki 1997 mein release hui thi aaj hi ke din, starring Arnold Schwarzenegger aur saath mein George Clooney.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
4: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
3: Renew?
4: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
3: What better way to celebrate than with something timeless?
4: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, toh mera kya hoga?
6: Arey, relax. Sab tumhara hi to hai.
5: Sach? Ya phir court decide karega?
6: Wait, what?
7: Yes, agar proper estate plan nahi hai, toh aapki family ke decisions court leta hai.
8: Hi, this is Deepti Varma with NRI Wealth. Main families ko help karti hoon unki mehnat ko protect karne mein. The right way with estate planning.
7: Agar aapke paas sirf will hai ya kuch bhi nahi hai, to ye call delay mat kijiye. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
9: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
15: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
13: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
16: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
18: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
19: Fun Asia थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी राइट हियर. ये है गपशप गली विद मी टू. आपके साथ एक नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस पे सवार होना चाहती हूँ, और इस नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस का जब पिटारा खुलता है ना, तो वो गाने निकलते हैं जो आपको बेहद पसंद है फ्रॉम यस्टरडेज. तो जी हाँ, ऐसे कुछ गानों की तरफ चलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं बात करने वाली हूँ कुछ उन पिटारों में से जो जेम्स निकलने वाले हैं हमारे, द गोल्डन सॉन्ग्स दैट आई कॉल देम. जी हाँ, उसकी अगर बात की जाए तो पीएमजी ज्वेल्स की क्यों नहीं बात की जाए यार, जो भी चमकता और बिल्कुल अपने आप में स्टनिंग कलेक्शन जो लेकर आता है, जैसे कि ये सेगमेंट आपके लिए लेकर आएगा इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, वैसे ही उनके पास ज्वेलरी में वो कलेक्शन है. पीएमजे ज्वेल्स की यहाँ पे बात हो रही है, 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो जरूर जाए, वो चाहे आपके ब्राइडल कलेक्शन के लिए हो या आपके एवरीडे सेलिब्रेशन के लिए हो. जी हाँ, हर दिन अपने आप में सेलिब्रेशन है. जिस दिन मन करे आपका कुछ डिफरेंट, कुछ ट्रेडिशनल, कुछ कॉन्टेम्प्ररी खरीदने का, आप जरूर पहुंचे. एज फार एज द ट्रेडिशनल ज्वेलरी इज कंसर्न, क्लासिक इंडियन ज्वेलरी इवॉल्व्स इनटू मॉडर्न स्टेटमेंट पीसेस देयर दैट ऑनर द पास्ट व्हाइल डिफाइनिंग टुडेज स्टाइल. दैट्स व्हाट दे ब्रिंग फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन एंड मच मोर. द मॉडर्न वॉल्ट दैट दे ओपन फॉर ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन. जरूर याद रखें कि ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है इस 20 तारीख को, यानी कि सैटरडे को, एंड यू हैव टू बी देयर बिटवीन 11 AM टू 2 PM. एंड आई विल गिव यू एग्जैक्टली द रीजन, क्योंकि ना सिर्फ आपको उनके एक्सक्लूसिव कलेक्शन का पता चलेगा, लेकिन आपको उनके एक्सक्लूसिव ऑफर्स फॉर ग्रैंड ओपनिंग जो है उनके पास, उसके बारे में भी पता चलेगा. एक्साइटिंग फेस्टिविटीज जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं, एंड चांस टू विन ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसेस फ्रॉम पीएमजे ज्वेल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट यू नीड टू गो. अब जाने के लिए एड्रेस की ज़रूरत होती है. क्या है ना कि मैं अभी हाल ही में एक कोई स्टोर मुझे जाना था, एंड मैंने यही देखा कि मैं जीपीएस के बिना बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, और इसीलिए आज का हमारा जो नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस है, इट इज़ ऑल अबाउट दैट. आई टॉक टू यू अबाउट दैट इन अ बिट, लेकिन अभी फिलहाल पीएमजे ज्वेल्स का जो है एड्रेस आप लिख लीजिए फॉर योर जीपीएस. 13215 मेन स्ट्रीट, स्वीट नंबर 310 इन फ्रिस्को दे आर लोकेटेड, और ग्रैंड ओपनिंग हो रही है इस सैटरडे को. जरूर इसका हिस्सा बने, प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा घट्टा मनेनी. और ये एक ऐसी ज्वेलरी का शोरूम है जो जेनरेशन से लोग ट्रस्ट करते आए हैं, और अब आपके लिए फ्रिस्को में. चलें हम नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस पे सवार होते हैं. लेट्स गेट यू दिस गाना एंड वील कीप यू ऑन रोड विथ दिस वन. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

और हमारे कदम आवारा होते अगर हमारे साथ जीपीएस ना होता तो कहीं तो गुम हुए होते हम लोग. लेकिन जीपीएस के पहले भी हम अपने आप को अच्छी तरह से संभाल रहे थे. लेकिन आई हैव टू से वी कांट इवन फाइंड ए न्यू कॉफी शॉप इन फ्रिस्को और लेट्स से नेविगेट ए कंस्ट्रक्शन डिटोर ऑन ए टोल वे विदाउट आवर फोन स्क्रीमिंग डायरेक्शंस एट अस एवरी 2 seconds. आप मानते हो कि नहीं इस चीज़ को कि हम कितने स्पॉइल्ड हो गए हैं गूगल मैप्स और ये सारी चीज़ों के कारण. ना हमारी लाइफ में ना इतनी कन्वीनियंस आ गई है कि हम वो पुराने दिन भूल गए हैं. और वो पुराने दिन ही मैं याद करना चाहती हूँ कि क्या है ना कि एक ज़माना था बिफोर स्मार्टफोन्स कि जब हम रोड ट्रिप पे निकलते थे US में या लेट्स से इन इंडिया या पाकिस्तान बांग्लादेश जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हो तो हमारे ना बड़े हाई स्टेक सर्वाइवल मिशन एक होता था क्योंकि हमारे पास होते मैप होते थे AAA के मैप होते थे यहाँ पर या मैप क्वेस्ट होगा कि अगर मैप क्वेस्ट से अगर आपको कोई डायरेक्शन चाहिए कहीं नई जगह जाने के लिए तो आप एक दिन पहले वो प्रिंटआउट्स निकालोगे एंड देन यू हैव टू रिमेंबर टू टेक द प्रिंटआउट्स विथ यू. कभी कभी जब प्रिंटर जैम हो जाता था आपका दिमाग भी जैम हो जाता था. सो मेनी थिंग्स यूज टू हैपन एंड लाइक 15-20 pages हम प्रिंटआउट्स के लेकर जा रहे हैं अपने साथ या तो वो AAA का बड़ा सा जो मैप होता था वो खोल के बैठे हैं. एंड देन देयर वॉज रैंड मैकनेली रोड एटलस इफ यू ऑल रिमेंबर. ये सारी चीज़ें हमारे ना मतलब जेंजी एंड मिलेनियल्स विल एक्चुअली रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड इन फैक्ट पीपल बिफोर दैट एज वेल क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान हमारे उन देशों का हाल कुछ अलग था कि मैप्स वैप्स नहीं होते थे. वहाँ पे हमारे एक अंकल जी एक आंटी जी या एक भैया खड़े होते थे रोड कॉर्नर पे. हम उनसे पूछते थे कि यार वहाँ कैसे पहुँचे तो वो बताएंगे आपको कि यार वो सफ़ेद जो घर है ना उससे लेफ्ट ले लेना, वो जो डबल स्टोरी घर आएगा उसे सीधे चले जाना, आगे एक मैदान मिलेगा वहाँ से राइट ले लेना और पहुँच जाओगे आप. मैंने एक्चुअली आपको अपने मोहल्ले की जो है ना स्वीट्स और स्नैक्स की दुकान तक पहुंचा दिया बैक इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट. लेकिन येस आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू दिस सिंपल थिंग की आपका सबसे ऐसे एक्साइटिंग रोड ट्रिप अगर कुछ रहा हो तो ज़रूर मुझे बताइए. एंड इट इज़ फॉर नियॉन कैक्टस. क्या पता था आपको कि भाई उस एक एडवेंचरस ट्रिप के लिए आपको आज इनाम मिलेगा? अगर पता होता तो शायद थोड़ा आप ज़्यादा इन्जॉय कर लेते. ठीक है, इट इज़ कमिंग अप फॉर यू. द क्वेश्चन इज आपका कोई एक्साइटिंग ऐसा रोड ट्रिप है वो यू नो स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पॉइंट टू द डेस्टिनेशन पॉइंट बस इतना ही जानना है हमें. डू कॉल मी राइट नाउ एज आई प्ले दिस नेक्स्ट ट्रैक फॉर ऑल ऑफ यू और जानना चाहते हैं कि भाई कौन सा आपका ट्रिप बड़ा ऐसे एडवेंचरस टाइप का रहा था. नंबर इन द स्टूडियो.

लिसन सच एडवेंचरस स्टोरी दैट आई एम लिसनिंग टू राइट नाउ. और ये है बातें वो जमाने की जब यू नो हमारे पास ऐसे गूगल मैप या GPS नहीं हुआ करता था. उसके पहले जो होता था वो था AAA का मैप या वो एटलस होता था. विद एवरी स्टेट वुड हैव देयर ओन एटलस एंड डिटेल्स पूरे रहती थी उसमें एंड बहुत अच्छा और क्लियर डायरेक्शन होता था. बस यही है कि वो आप इनलार्ज नहीं कर सकते थे. अगर मतलब आपकी आंखें सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता था वो भी देखना. बहुत छोटे छोटे प्रिंट्स होते थे एंड ऑल ऑफ दैट यू नो. एंड वन ऑफ माई लिसनर्स टॉक्ड अबाउट दिस ट्रिप्टिक ऑल्सो, जो कि एक ऐसे ही हेल्प होता था वेयर यू कुड एक्चुअली सी द मैप्स एंड ऑल ऑफ द प्लेस दैट यू आर ट्राइंग टू गो. और कमाल की बात ये होती थी कि डिस्पाइट ऑल द कन्फ्यूजन हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते थे. तो मैं सारी लाइन्स ओपन करना चाहती हूँ हमारी जेन जी से लेकर मिलेनियल्स, जेन एक्स, एनीबडी हु वॉन्ट टू पार्टिसिपेट. ऑल थ्रू दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू डू दिस एंड प्ले सम नॉस्टैल्जिक म्यूजिक फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर ऑन फनीशर रेडियो. नियॉन कैक्टस की तरफ से किसी एक को देने वाली हूँ मैं कमाल का $20 का गिफ्ट कार्ड डाइन इन. यानी कि आप जब डाइन इन करने जाओगे ये $20 का गिफ्ट कार्ड आप यूज कर सकते हो फॉर अ प्लेस जहाँ पे मेक्सिकन फ्यूजन के साथ जो वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस का एक बहुत कमाल का एक अमेलगमेशन मिलता है ना, मजा आ जाएगा आपको. फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़बीहा हलाल ऑप्शंस हैं और वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सारी चॉइसेस हैं. नियॉन कैक्टस इज द नेम ऑफ दिस प्लेस, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको क्यूरेटेड कॉकटेल्स मिलते हैं, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स मिलते हैं, हैप्पी आवर्स मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपके लिए होता है. तो भाई और क्या चाहिए बंदे को. अगर मैं ये भी कह दूँ कि स्पेशल डील्स होते हैं हर दिन, तो हुई ना कमाल की बात. तो जी हाँ, आप अपना कोई कमाल का एडवेंचरस ट्रिप हमारे साथ शेयर कर रहे हो और आप में से किसी एक को मिलने वाला है दिस $20 डाइन इन गिफ्ट कार्ड फ्रॉम नियॉन कैक्टस.

बात। तो जी हाँ, आप अपना कोई कमाल का एडवेंचरस ट्रिप हमारे साथ शेयर कर रहे हो और आप में से किसी एक को मिलने वाला है दिस $20 डाइन इन गिफ्ट कार्ड फ्रॉम नियॉन कैक्टस। आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई कॉलर्स एंड लिसन टू फ्यू मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड देन आई विल शेयर द नेम ऑफ द विनर।

0: ऐसा ही हाल हमारा डेस्टिनेशन के लिए होता था कि चली आ, तू चली आ, क्योंकि जब हमारे पास GPS नहीं होता था, जब गूगल मैप्स नहीं होता था, तो क्या होता था? हमारे पास होता था एटलस, या हमारे पास होता था AAA का एक जो प्रिंट, एक जो पेपर प्रिंट होता था, वो इन द फॉर्म ऑफ मैप्स एंड एवरीथिंग. इट यूज्ड टू बी बिग, मतलब फोल्ड करके आप उसको गैस स्टॉप्स पे या ब्रेक स्टॉप्स पे जो है वहाँ पे आप वहाँ से ले सकते हो. इस तरह का पूरा अरेंजमेंट था. एंड इसके अलावा जो को पायलट स्ट्रेस था उसका कुछ अलग ही कहना था कि मतलब आप कार जो ड्राइव कर रहा है, बी इट यू और योर पार्टनर, ठीक है, उनके साथ जो झगड़ा होता था, यू नो, बी इट योर पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स के साथ आप बैठे हो तो आप जानते हैं कि कितनी लड़ाई होती है, वो जो कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है मैप्स को लेकर होता था, यू नो. सीरियसली GPS एंड यू नो गूगल नेविगेशन हैज़ स्पॉइल्ड अस टू द हिल्ट. और इसीलिए कुछ कॉल्स लेना चाह रही थी आप लोगों के, 972-235-5555. देखिए, मैंने किसी को होल्ड पे रखा था, उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ऑन एयर लेती हूँ, लेकिन आई कैन सी दैट द कॉल ड्रॉप्ड. अगर आप सुन रहे हैं तो अभी कॉल कीजिए, तो हम आपको ऑन एयर ले लेंगे एंड बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक अपने आप में ना एक महाभारत होता था इन द कार, क्योंकि जो द मेन, आई थिंक द मेन हैव सम प्रॉब्लम विद आस्किंग डायरेक्शंस. नहीं रुकते थे यार, कितना भी बोलें, हम एक गलत टर्न भी अगर ले रहे हो ना, हमें पता है कि वो गलत टर्न है, लेकिन वो अपनी पॉइंट एस्टैब्लिश करने के लिए बोलेंगे कि नहीं, शॉर्टकट है, शॉर्टकट लेके जा रहे हैं. ऑलराइट, दिस लास्ट कॉलर, आई होप इट इज द सेम कॉलर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. यू आर लाइव ऑन एयर. वेरी क्विकली आप बताएं कि कहां, क्या ओरिजिन और क्या डेस्टिनेशन थी.
1: नमस्ते, क्षमा करें.

0: मैं वो कॉलर नहीं, लेकिन मैं हम चार पांच लोग फ्रेंड जा रहे थे, पांच साल पुरानी की बात है।
1: हाँ जी।
0: तो हम अर्बाइन कैलिफोर्निया में से लास वेगास नेवाडा तक जा रहे थे।
1: okay.
0: और एक या मेरा एक मेरा फ्रेंड जो आगे बैठना चाहता था, सोच रहा था अपने आपको इज अ बेस्ट ड्राइवर, और उसकी वाइफ उसको हेल्प कर रही थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट रात को दे जस्ट लॉस्ट देयर वे ऑन I-15 एंड वी वेंट लाइक 200 माइल्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेगास। और सब लोग उसको
1: बहुत गालियां पड़ी है, बहुत प्यार से गालियां दी है।
0: तो वी जस्ट गिव हिम हेल, कहा कि भाई तुम मैप नहीं देख सकते, अपनी बीवी पर डिपेंडेंट हो, बीवी भी नहीं देख सकती, हमसे तो पूछ रहे होता ये सब। एनीवे जस्ट अ ड्रामा।
1: ये तो मुझे ना वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप का सीन लग रहा है बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका, व्हाट्स योर नेम?
0: श्रीनाथ,
1: आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से दिस गिव अवे। थैंक यू सो मच, प्लीज होल्ड द लाइन, क्योंकि ये इनाम के लिए पूरी डिटेल्स लेना जरूरी है। $20 गिफ्ट कार्ड, डाइन इन गिफ्ट कार्ड जो मिला है इनको, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आती हूँ मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यू एंजॉय दिस नेक्स्ट गोल्डन ट्रैक फ्रॉम आर नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस।

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
10: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
11: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
10: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
12: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
13: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
14: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
13: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
14: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
13: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
14: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
17: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
16: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
18: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
19: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
19: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
19: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
13: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियाँ हमारे लिए नहीं होती।
13: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना। गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2, रिलीजिंग ऑन द 19th of June एट थिएटर नियर यू।

दैट्स एन अमेजिंग कॉम्पोजिशन जो 2 महीने पहले ही रिलीज हुआ है ये गाना, और इट इज सिटिंग कम्फर्टेबली एट 18 मिलियन व्यूज, एंड इट इज स्पेशली वेरी प्रेशियस फॉर दिस मैन, 50 ईयर्स ओल्ड मैन, ए फैक्ट्री वर्कर. जलंधर से ये जनाब हैं और इनका नाम है अशोक मस्कीन. आई वॉन्ट मेक श्योर दैट द नेम इज करेक्ट. येस, ये एक नए उभरते हुए सितारे हैं जो कि शौकिया गाते थे और हर रोज रियाज करते थे और अपने फैमिली को सपोर्ट करते थे. फैक्ट्री, छोटे मोटे एक फैक्ट्री जलंधर में वो काम करते थे, और फिर जो होता है यू नो सम ड्रीम्स डू कम ट्रू. उनका रील किसी ने पास किया कंपोजर्स को, और वहाँ से उनका जो टैलेंट है कोक स्टूडियो भारत में आया, और ये जो गाना है आपने, वन ऑफ द वॉइसेस वॉज हिज एंड दिस सॉन्ग हैज बिकम वायरल. और उसके बाद उन्होंने अपनी वो फैक्ट्री का जो जॉब है वो छोड़ दिया है क्लियरली टू परस्यू म्यूजिक इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. We wish such stories all the success, and इस तरह की कहानियाँ जब भी सामने आएंगी ज़रूर शेयर करेंगे हम आप लोगों के साथ. लेकिन जो क्या कहना चाहिए, जो अनसंग हीरो हैं उनके बारे में भी बताना चाहती हूँ यहाँ पर. और ये वो हैं जो कि ना वीडियोज़ अपलोड करते हैं YouTube पे ऑफ DIY projects, उनके बारे में भी बात करना चाहती हूँ. Let's get you another Coke Studio Bharat song for all of you. I have absolutely enjoyed playing it for you. This is Gapshap Gali with me too.

You are tuned into Funisha Radio 104.9 FM, calling all Bob the Builders amongst us. जी हाँ, जो आप लोग जो हैं, जो DIY project में माहिर हैं या धन्य हैं, आपके चरण कहाँ हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ यार बिल्कुल भी, और ना करने की श्रद्धा रखती हूँ. मतलब I'm really bad at it. क्या होता है ना कि मतलब वो जो एक क्लासिक टेस्ट जो होता है ह्यूमन पेशेंस का, मेरे ख्याल से उसी वक्त होता है. एक जो मल्टी ड्रॉड स्टडी डेस्क आपको असेंबल करना है या गेमिंग टेबल कुछ असेंबल करना है, और आपको लगता है कि यार ये तो बस 3 बोर्ड्स और 4-5 स्क्रूज की बात है, आराम से हो जाएगा, बहुत आसान है ये तो. एंड यू कॉन्फिडेंटली ओपन द बॉक्स, डंप 200 प्लास्टिक पाउचेस ऑफ सिल्वर मेटालिक यू नो पार्ट्स ऑन टू द कार्पेट, और फिर इंस्टेंटली आप रिग्रेट करते हो अपना ये लाइफ डिसीजन. और फिर उस मोमेंट पे याद आता है आपको कि कुछ ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे ये DIY प्रोजेक्ट शायद अपलोड किया होगा, एंड श्योर इनफ यू फाइंड समबडी हु हैज पोस्टेड इट, और वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, एंड देन यू होपफुली फाइंड योर वे. हमारे साथ एक बार हुआ था कि व्हाट वाज दिस, व्हाट इज इट कॉल्ड, हीटर, द आउटडोर हीटर्स जो होते हैं ना, हमको असेंबल करने लगे और हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा था व्हाट वी वर डूइंग. एंड देन श्योर इनफ एक वीडियो हमें मिला यूट्यूब पे बहुत साल पुराना, जो किसी ने असेंबल करने का उन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस जो दिया था. धन्य है, महान है वो लोग जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं यार. सीरियसली, आई मीन सीरियसली, यू आर लिसनिंग टू Funisha Radio 104.9 FM. अनदर कोक स्टूडियो सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू, दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान. Bringing the community together, this is Funisha Radio.

सुन रहे हैं आप गपशप गली और मेरा नाम है मीठू और इस वक्त मैं आपके साथ जो है ट्रैफिक अपडेट शेयर करने वाली हूं और ये ट्रैफिक अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं अटर्नी ओमर ख्वाजा और याद रखें कि इनके साथ आप जरूर जुड़े इफ देर इज ए कार एक्सीडेंट दैट यू हैव बीन पार्ट ऑफ एंड यू आर एट द कॉम्पनसेशन एंड यानी कि आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए तो जरूर आप इनके साथ कनेक्ट करें चाहे वो स्लिप एंड फॉल केस हो या वर्क प्लेस इंजरी या जैसे कि मैंने कहा कार एक्सीडेंट में पड़े हों अटर्नी ओमर ख्वाजा और उनकी टीम आपको वो कॉम्पनसेशन दिलवाने में पूरी तरह से आपकी मदद करेगी और इनका जो एक बिग प्रॉमिस आप लोगों के लिए कि आपको तब तक नहीं पे करना जब तक आप केस जीत नहीं जाते हो दैट्स अ बिग अश्योरेंस दैट दे कम विद और फ्री कंसल्टेशन के लिए नंबर है 4693005046 एंड डू विजिट द वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इट इज omar.com और इनके तरफ से आपके लिए ट्रैफिक अपडेट एक मेजर कंस्ट्रक्शन साइट जिसके बारे में बताना चाहती हूँ इट इज ऑन 635 एट 35 ईस्ट साउथ बाउंड रैम्प वेस्ट बाउंड वहां पे लेफ्ट मोस्ट लेन जो है वो पूरी तरह से बंद है एंड दैट इज कॉजिंग ए ट्रैफिक बैकअप जस्ट नो दैट इसके अलावा एक मेजर कोलिशन के बारे में बताना चाहती हूँ विच इज ऑन 35 ईस्ट एट वेलवुड पार्क पार्कवे साउथ बाउंड और वहाँ पे राइट से सेकंड और थर्ड लेन जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हैं इस वक्त और इसीलिए बहुत सारा ट्रैफिक बैकअप है एंड वी वांटेड यू ऑल टू नो अबाउट दैट और उसके अलावा कुछ छोटे मोटे माइनर कंस्ट्रक्शन जोन्स हैं 35 ईस्ट पे जिसके कारण ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो है बट नथिंग टू वरी अबाउट एंड दैट इज द ट्रैफिक अपडेट ब्रॉट टू यू बाय द ऑफिस ऑफ Attorney Omar Khwaja. You are tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM taking you to a reimagined version of Piya Basanti, that classic by Ustad Sultan Khan that we have always enjoyed. This is the 2.0 version.

ही सैड है और सैड है साथ में पोर्चुगल के फैंस. क्या हुआ ये हम सब जानते हैं. कल स्पेन वर्सेस केप वर्दे का जो मंडे का मैच था ना, जो ड्रॉ हुआ था विद नो गोल्स, पोर्चुगल फैंस के लिए भी, क्रिस्टियानो और रोनाल्डो की टीम का भी कुछ ऐसा ही शॉकर मिला उनको. आफ्टर अ पिक्चर परफेक्ट बिगिनिंग, पोर्चुगल वर रेंडर्ड मोस्टली इनइफेक्टिव फॉर द फाइनल 80 मिनट्स अगेंस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड केम अवे विद ओनली ए 1-1 ड्रॉ इन अ मैच इन विच दे वर हैवीली फेवर्ड. एज वी ऑल नो, पोर्चुगल का जीतना बिल्कुल साफ दिख रहा था, मतलब मैच के पहले और फर्स्ट हाफ में. लेकिन लास्ट 80 मिनट्स में, जैसे कि मैंने कहा ना, एवरीथिंग चेंज्ड. एंड ये 5 वर्ल्ड कप्स में फोर्थ टाइम है कि जब पोर्चुगल अपना पहला मैच विन नहीं कर पाई है. एंड इट वाज अनदर रेफरेंडम ऑन द एनिग्मा दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट दिस लेवल इन 2026 फीफा गेम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अच्छा, आज के दिन जो मैचेस हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ. द मोस्ट sought after match will be between Mexico and South Korea, which is at 8 p.m. today. Ye group A ka jo group stage match chal raha hai abhi. Group B se Canada and Qatar will also be playing today at 5 p.m. And then there is Switzerland and Bosnia and Herzegovina, who are going to start in about an hour or two. And uske alawa filhal jo game chal raha hai, that is between Czechia and South Africa. And Czechia has scored a goal against South Africa so far and they are looking good so far. अब देखते हैं, इतना close है कि ये जो goal है वो last 1 minute में भी हो सकता है, हमें पता है. So it is still anybody's game, we are quite aware of that and we'll know in a little bit. And ये है FIFA segment on Gupshup Gali with me too. More FIFA news coming up for you in this segment, which is entirely dedicated to FIFA World Cup 2026.

अगर आप कल इंग्लैंड और क्रोएशिया के मैच के लिए गए हुए थे डैलस स्टेडियम, तो आपको पता है कि कितना हल्ला मचा है. फर्स्ट जो गेम हुआ था नेदरलैंड्स वर्सेस जापान ऑन June 14, तो उससे कहीं ज़्यादा हल्ला कल मच रहा था. एंड इट वॉज ए क्राउड ऑफ अराउंड 70,389 पीपल हु क्रिएटेड दैट इंटेंस एब्सोल्युटली रोरिंग एनवायरमेंट देयर. और ये थोड़ा सा और लाउड हो गया जब हाइड्रेशन ब्रेक्स लिए जा रहे थे, क्योंकि इस बार हाइड्रेशन ब्रेक्स एज अ रूल ज्यादा लिए जाएंगे. और वो जितनी बार भी हो रहा था वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रहा था, उसके कारण द फैंस वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट देन आई से दैट पीपल हैव टू टेक दैट, आई मीन द प्लेयर्स हैव टू टेक दैट हाइड्रेशन ब्रेक. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग कि कल से जो है हमारा हीट एडवाइजरी शुरू हुआ, आज रात के 9 बजे तक चलने वाला है. द हीट इंडेक्स इज क्लोज टू आई थिंक 110 टूडे, एंड दैट वी ऑल हैव टू बी really really aware of. And it's also important that we give you an update on whether that's coming up for you in just a bit, ladies and gentlemen. Uske pehle main aapko ye bhi batana chahti hu ki bhai Navneeta Khemka ka naam kaun nahi janta. Everybody, you know Navneeta, right? And she is with Keller Williams Realty, and wo aapki madad karne wali hai to buy, sell or relocate in the DFW area. She will make your life super super easy, kyunki har step में वो जो एक पर्सनलाइज्ड उनकी हेल्प मिलेगी, उनकी सर्विस मिलेगी, उनकी जो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है, दैट इज व्हाट वी एग्जैक्टली आर सीकिंग. जब हम किसी भी सर्विस को हम यूज करते हैं, हमें वो ऑनेस्टी चाहिए होते हैं, हमें वो जेन्युइन केयर चाहिए होता है. इट्स दैट एंड वे मोर व्हेन यू कनेक्ट विद हर, बिकॉज एवरी होम हैज अ स्टोरी टू टेल, एंड लेट हर हेल्प यू क्रिएट योर ओन. एंड द नंबर टू कॉल Navneeta इज 347-449-4242. दिस इज द FIFA सेगमेंट, ladies and gentlemen, and

0: A weak cold front will bring a chance for a few showers and thunderstorms late tonight. That's the good news for today. Going into Friday, that is tomorrow, another chance of rain will show up on Saturday. Strong wind gusts honge, heavy rainfall bhi aapko milega. And yehi hamara main concern rehne wala hai. Baki aaj heat advisory hai 9 p.m. tak. Please make sure that you take all the safety precautions. और इसी के साथ मैं आज के लिए आप लोगों को यहीं पे छोड़े जा रही हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि कल 10 बजे वापस आऊँगी. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी एंटरटेनमेंट और बहुत सारे सवाल जवाब के साथ. कीप लिस्निंग, दिस इज मी टू साइनिंग ऑफ.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
3: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
4: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
3: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
4: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
5: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: जिस बात का डर था वही हुआ. Lymphosarcoma of the intestine.
9: अरे कहना क्या चाहते हो?
10: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई. लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी. अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना. एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू. कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट.
5: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
11: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
5: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
12: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी. The Texas Super Kings are here, and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment.
7: Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

बिल्कुल सही बात है, हम कितने भी बड़े हो जाए दिल हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए, तभी मजा आता है जिंदगी का। आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। आज है थ्रोबैक थर्सडे और आज हम लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो शायद आज के इमोजीज और इंस्टेंट मैसेजेस के जमाने में थोड़ा रेयर सा हो गया है, लेकिन उसकी वार्म्थ आज भी दिल में बसी हुई है। आज बात करेंगे हाथ से लिखे खतों की, हैंड रिटन लेटर्स की। एक वक्त था जब सीन या ब्लूटिक नहीं होता था, इंतजार होता था पोस्टमैन का, हर खत के साथ आता था किसी अपने का प्यार, फिक्र और एहसास। क्या आपने भी कभी हैंड रिटन लेटर लिखा है या रिसीव किया है? व्हाट्स योर हैंड रिटन लेटर स्टोरी? लेट अस नो बाय कॉलिंग अस एट 972-235-5555।

आज का थ्रोबैक थर्सडे का थीम है दी हैंड रिटन लेटर्स, यानी हाथ से लिखे हुए खत। और अभी अभी हमारे लिसनर्स का कॉल आया और एक ने बताया कि कैसे जब वो यूएस में शुरू आए थे नए तो पाकिस्तान से उनके अम्मी अब्बू उनको खत लिखा करते थे जिनका उनको बेसब्री से इंतजार रहता था। वैसे खतों की अपनी कहानी है, कुछ लेटर्स लिखे गए लेकिन कभी भेजे नहीं गए, कभी किसी ने गुस्से में लिखा, कभी किसी ने प्यार में लिखा, कभी डायरी के बीच ना छुपा दिया, भेजा नहीं कभी। वैसे अगर आपको आज किसी को हैंड रिटन लेटर भेजना हो तो आप किसे लिखेंगे? वैसे एक बात बता दूं कि सारे लेटर्स ना मेल्स मतलब पोस्टमैन के थ्रू नहीं, कुछ कबूतर से भी भेजे जाते थे। आपने ये सॉन्ग नहीं सुना?

That's right. अब इसके साथ जो है हमारा आज का थ्रोबैक थर्सडे का जो थीम था हैंड रिटन लेटर्स वो खत्म होता है. आज के जमाने में हम हजार मैसेजेस भेजते हैं लेकिन हैंड रिटन लेटर्स की बात ही कुछ और थी. उसमें हैंड राइटिंग भी होती थी, गलतियां भी होती थी और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी फीलिंग्स भी होती थी. वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि फादर्स डे आ रहा है ऑन दिस संडे, ऑन दिस वीकेंड, तो शायद आप अपने फादर के लिए एक हैंड रिटन लेटर लिख दें. क्या ख्याल है?

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
3: हाँ।
2: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ।
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ।
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
2: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available if you hold H1B, F1, L1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
7: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
12: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूं आरजे सिमी एंड द शो इज द आफ्टरनून अड्डा। और मैं भी ऐसे ही वारी वारी हो गई थी जब मैंने पीएमजे ज्वेल्स का जो है कलेक्शन देखा। अगर आपको भी ये सब कलेक्शन एक्सप्लोर करना है तो भाई उनकी ग्रैंड ओपनिंग हो रही है June 20th को, जहां मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव ऑफर, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज और चांस एक ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीस जीतने का। पीएमजे ज्वेल्स जो है ये एसोसिएटेड है, इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं महेश बाबू और उनकी बेटी सितारा, और ये आ रहे हैं फ्रिस्को। जब भी कोई ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन होता है तो बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स होते हैं, आप जरूर अवेल करें बाय गोइंग एंड अटेंडिंग द सेलिब्रेशन। ये है फ्रिस्को में मेन स्ट्रीट पे, तो बिल्कुल बिल्कुल जाएं और डिस्कवर करें कि वो कौन सा ज्वेलरी है जो अपनी कहानी बयां कर रही है।

अब वक्त हो गया है हमारे गिव अवे राउंड का। अगर आप इस गिव अवे राउंड को जीतते हैं तो आपको मिलेगा चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से फ्री कड़ाही पनीर या फिर कड़ाही चिकन खाने का मौका, जो कि एलन में लोकेटेड है। और वक्त आ गया है सवाल का। सवाल बहुत ही क्रिएटिव है। आज हम कोई रिडल नहीं करेंगे, आज हम कोई फैक्ट्स नहीं पूछेंगे आपसे, आज हमें चाहिए क्रिएटिव और इनोवेटिव आंसर्स। सवाल ये है कि वो क्या है जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। वैसे इसका जवाब गॉड, खुदा, भगवान या मनी, पैसा नहीं होना है। आपको कुछ क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग सोचना है और हमें बताना है बाय कॉलिंग अस एट 972-235-5555।

हाँ जी बुमरो हमें अपना विनर मिल चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स आए। सॉरी मैं कुछ कॉल्स ले नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। वैसे आप अभी मुझे कॉल करके बता सकते हैं, एटलीस्ट आपका आंसर तो मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर ही सकती हूँ। बहुत लोगों ने बोला कि बीवी के सामने तो जमाना झुकता है, काफी कॉमन आंसर था वो। और कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों के सामने भी झुकना पड़ता है। भाई बिल्कुल नहीं चलती आपकी। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो आपसे हाइट में छोटे हो ना उनके सामने भी झुकना पड़ता है क्योंकि आपको नीचे देख के बात करना है। वैसे एक आंसर ये भी है कि आपको अपना मोबाइल फोन जो सेल फोन है उसके सामने भी झुकना पड़ता है। सबकी गर्दनें जो हैं एकदम झुकी हुई नीचे ही रहती हैं। और किसी ने एक बहुत ही थॉटफुल बात करी कि जो सबको माफ कर देता है ना उसके सामने भी झुकना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्रिएटिव आंसर्स। आई एम स्टिल टेकिंग सम आंसर्स, बट हमारे विनर अभी मैं डिक्लेयर कर देती हूँ, वो हैं जोहरा जी। कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है फ्री कढ़ाई पनीर या फिर कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ बाइट्स जो है ना काफी इंटरेस्टिंग उनके लंचेस होते हैं। हर लंच पे हर दिन वो नए नए डिशेस लेके आते हैं। मंडे टू फ्राइडे स्पेशल थाली भी होती है। लोकेटेड है एट मैकडर्मट ड्राइव इन एलन, तो जरूर जाएं और इंजॉय करें इनका मस्ती भरा खाना एकदम टेस्टी देसी ट्विस्ट के साथ। और इनका जो वेबसाइट है वो है चंडीगढ़ बाइट्स.com।

गुड आफ्टरनून है जी सभी को. आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा. और अभी अभी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर का कॉल आया हमें और उन्होंने बोला कि उनके बिहाफ पे मैं आप सब लोगों के साथ यानी डैलस और एडजेसेंट एरियाज के लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करूं. शाहिना ने कहा है कि जो हमारा दिल होता है, जो हर किसी का दिल होता है, वहां पे खुदा भगवान गॉड बसते हैं और हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए या फिर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके कारण सामने वाले का जो दिल है वो हर्ट हो, क्योंकि आप अल्टीमेटली अपने भगवान खुदा या गॉड को हर्ट कर रहे हो. तो काफ़ी थॉटफुल लगा मुझे और बिल्कुल शाहिना सही बात है और हम सब प्रॉमिस करते हैं कि हम ट्राई करेंगे और बिल्कुल हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे. और आपके लिए शाहिना, क्योंकि आपकी ये रिक्वेस्ट जो गुजारिश थी वो काफ़ी इनोसेंट थी, आपको मैं ये सॉन्ग गुजारिश डेडिकेट करती हूँ.

वैसे क्या आपकी गुजारिश और ख्वाहिश भी यही है कि आपका एक अपना घर हो, चाहे वो आपका पहला घर हो या फिर आप अपग्रेड कर रहे हो, रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस देख रहे हैं? तो ड्रीम होम मॉर्गेज जो है वो एक सही सॉल्यूशन है आपके लिए, क्योंकि वो 1998 से फैमिलीज अक्रॉस द यूएस को हेल्प करते आ रहे हैं उनके होम ओनरशिप को हकीकत यानी कि रियलिटी में बदलने में। वो देते हैं पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस और उनका जो पूरा प्रोसेस होता है ना काफी स्मूथ और स्ट्रेस फ्री भी होता है। इनके पास यूएस के सारे स्टेट्स यानी 50 स्टेट्स में लाइसेंस है और इनकी पूरी टीम कमिटेड है कि आपको आपका आपके नीड्स के अनुसार परफेक्ट या राइट लोन ऑप्शन मिले। अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है अपने होम को लेके तो आप कॉल कर सकते हैं उन्हें एट 972-245-5626 या फिर आप विजिट करें उनका वेबसाइट विच इज ड्रीम होम मॉर्गेज.com फॉर फर्दर डिटेल्स।

This was a beautiful song from the movie Zindagi Na Milegi Dobara. और हमारा भी यही कहना है कि जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, जी लीजिए, अच्छे से ड्राइव कीजिए, बिल्कुल सेफ रहिए. बट फिर भी अगर आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो आप रीच आउट कर सकते हैं अटर्नी ओमर ख्वाजा को, क्योंकि वो आपका केस फाइट करेंगे और तब तक पैसे नहीं लेंगे जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते. और उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है वो इंश्योर करेगी कि आपको अपना ड्यू कंपनसेशन जरूर मिलेंगे. बट यू नो, इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करना कभी कभी कितना स्ट्रेसफुल हो जाता है. उनका प्रोसेस वगैरह काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लीगैलिटीज काफी सारी होती हैं. तो लाइफ में अगर कोई ऐसा है जो आपके स्ट्रेसफुल प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाए, तो उससे फ्री कंसल्टेशन जरूर ले लें. आप उनको रीच आउट कर सकते हैं एट 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, विच इज attorneyomar.com. और एक रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम one of our listener to play this song. I hope you like it. Tujhse naraaz nahi zindagi. Aajkal zindagi pe kaafi songs ki request aa rahi hai.

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
13: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। MyFamilyHomeLoan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट MyFamilyHomeLoan.com और कॉल 4697343338 4697343338। MyFamilyHomeLoan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
15: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
14: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
16: नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
17: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल केओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना।
18: गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2, रिलीजिंग ऑन द 19th of June एट थिएटर नियर यू।

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो और मैं हूँ आरजे सिमी ऑन आर वेरी शो द आफ्टरनून अड्डा। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ तनिष्क के अमेजिंग सेलिब्रेशन के बारे में। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं द फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ आप अपना पुराना यानी कि ओल्ड गोल्ड ले जा सकते हैं और पा सकते हैं $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज्ड गोल्ड विद डायमंड परचेसेस। और तो और 9 कैरेट के ऊपर के ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पे बिल्कुल 0% डिडक्शन है, कोई भी डिडक्शन नहीं है। तो वक्त आ गया है कि आप अपने पुराने गोल्ड से कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ ताज़ा तरीन और कुछ टाइमलेस क्रिएट करें ओनली एट तनिष्क USA। और वक्त आ गया है एक और चीज़ का, विच इज़ द गिव अवे राउंड। और आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, अगर आपको उसका जवाब पता है तो आप बताइए, और आपको मिल सकता है फन पिज्ज़ा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। मैं आपको 3 हिंट दूंगी और आपको बताना है कि मैं किस एक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। रेडी? ओके, सो द पहला हिंट है कि आज उनका बर्थडे है और वो धुरंधर की लीड एक्ट्रेस हैं, और बोथ द फर्स्ट एंड द सीक्वल, और वो एक चाइल्ड एक्ट्रेस भी रही हैं। आपको अगर जवाब पता है तो कॉल करना है एट 972-235-5555 पे।

हमें हमारा विनर मिल चुका है। आज का जो हमारा गिव अवे था वो उसका क्वेश्चन था कि वो कौन है जिनका आज बर्थडे है, जो चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी हैं प्लस जिन्होंने धुरंधर में लीड एक्ट्रेस का काम किया था, और आंसर है सारा अर्जुन। और सबसे पहले जवाब दिया है रुद्रा ने, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस रुद्रा, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। अगर अभी तक आपने फन पिज्जा किचन को एक्सप्लोर नहीं किया है तो जाएं, क्योंकि वहां पे आपको देसी ट्विस्ट के साथ मस्त स्पाइसी फ्लेवर मिलता है। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं अचारी पनीर पिज्जा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मीट लवर हैं, तो तंदूरी चिकन पिज्जा इज अ राइट चॉइस फॉर यू। यहाँ पे एक स्लाइस आपका इंतजार कर रहे हैं कि आओ और मुझे खा लो। और आपको अगर कोई और डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग देयर मेन्यू या फिर देयर ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स, तो प्लीज गो टू देयर वेबसाइट विच इज funpizzakitchen.com। और बात जब सारा अर्जुन की हो रही है तो गाने भी उनके बजा देते हैं।

अब वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में। 13 ईयर से टेक्सास प्राइमरी केयर जो है प्राउडली केयर करते आ रहे हैं कम्युनिटी की, और अब वो एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ और येट अनदर लोकेशन फ्रिस्को में आ रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग लनाक्सी मेडिकल। ये फाउंड किया गया है बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, और लनाक्सी मेडिकल पे ना आपको हर तरीके की मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी, जैसे कि प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक और तो और हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, सब कुछ ऑल अंडर वन रूफ। और तो और ये पूरे सारे वीक के जो डेज हैं 7 days अ वीक ऑपरेट करते हैं, इजंट इट इंटरेस्टिंग दैट टू फ्रॉम 8 AM to 8 PM। तो अगर आपके पास वीकडे में टाइम नहीं है, बिजी हैं आप, तो वीकेंड पे भी जा सकते हैं। वॉक इन होता है, बिल्कुल दे वेलकम दी वॉक इन्स एंड कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है।

अमेजिंग सॉन्ग फ्रॉम सनम पुरी. और जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये जो आज का सेगमेंट था, आई होप आप सबको पसंद आया हो. एंड दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाई एजी फिनटैक्स, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म है यूएस में. ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेसेस के लिए. काफ़ी ट्रस्टेड हैं, एफिशिएंट हैं और आपको फ्यूचर के लिए एकदम रेडी करते हैं विद द टैक्स प्लानिंग. आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 4699429888 या फिर आप विजिट करें उनका वेबसाइट विच इज agfintax.com. और कॉकटेल टू आ रही है 19 जून को. आई होप आप सब रेडी हो गए हो. बिल्कुल, इसको वीकेंड भी आ रहा है तो आप जाके देखें. और तुम्ही वो बंदू का सीक्वल सॉन्ग भी आ गया है. लेट्स एंजॉय.

0: With this, I'm saying bye. कल मिलूंगी आपसे फिर.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
5: Arre relax, sab tumhara hi to hai.
4: Sach? Ya phir code decide karega?
5: Wait, what?
3: Yes, agar proper estate plan nahi hai, तो आपकी फैमिली के decisions कोर्ट लेता है.
6: Hi, this is Deepti Varma with NRI Wealth. मैं families को help करती हूँ उनकी मेहनत को protect करने में, the right way with estate planning.
3: अगर आपके पास सिर्फ will है या कुछ भी नहीं है तो ये call delay मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
7: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
8: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया.
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया.
8: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
10: Visit www.senadainc.com today.
11: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
11: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
11: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
12: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
11: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
13: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
14: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
15: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
14: Renew?
15: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
14: What better way to celebrate than with something timeless?
15: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
16: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
17: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर. मैं मधुलिका आप सभी का करती हूँ हार्दिक स्वागत. वैसे तो मैं लेकर आती हूँ जस्ट चिल एवरी सैटरडे एंड संडे 10 AM टू नून होता है मेरा और आपका साथ, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल टुडे आई एम कवरिंग फॉर किरण, दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद 9722355555. कल पूरे 2 हफ्ते हो जाएंगे मेरे और आपके इस साथ के कवरिंग किरण फ्रॉम 2:30 to 5. एंड एवरी डे आई हैव ब्रॉट सम न्यू थीम फॉर यू गाइज. सो टुडेज थीम इज प्रीटी ईजी. हाँ, बहुत से ऐसे गाने हैं तो ये जो थीम है वो कुछ ऐसा है कि हम सुनेंगे वो गाने, कोशिश करेंगे कि हम थोड़े से लेटेस्ट गाने सुने लाइक 90s ऑनवर्ड्स. तो वो गाने जिन गानों में वीडियो में एक्टर ने या एक्ट्रेस ने, आई मीन जनरली तो एक्ट्रेस ने साड़ी पहनी हो. सो अगर ऐसे कोई गाने आपको याद आ रहे हैं देन द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555.

जी हाँ, मीठे मीठे गीत तो हम जरूर सुनेंगे, एंड बहुत से गाने हैं जिन गानों में एक्ट्रेस ने साड़ी पहनी हुई है, और आज हमारा थीम वही है कि हम वो गाने सुनेंगे जिनमें कि एक्ट्रेस ने साड़ी पहनी हो वीडियो में, राइट। लेकिन उसके पहले कि मैं अगला गाना प्ले करूं, आपको मैं माई टाइम इक्विटी के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि हम सबको कभी ना कभी कुछ फाइनेंशियल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कई बार हमें कुछ लग रहा होता है लेकिन एक्चुअली कुछ और होता है, सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन, द राइट गाइडेंस, राइट। सो माई टाइम इक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाई हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। सो वेदर यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ या फिर रिटायरमेंट और ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, वेल माई टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स। तो आप विजिट करें mytimeequity.com और यू कैन कॉल देम, द नंबर इज 4697021272।

Taken from the movie Kabhi Khushi Kabhi Gum, that was Suraj Hua Madham. अच्छा अगला गाना प्ले करूं, विच इज़ अ सॉन्ग रिक्वेस्ट, माधुरी दीक्षित का सॉन्ग है, लेकिन उसके पहले मैं आपको तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहूँगी. गर्मियों की छुट्टियां हैं, होता है ना कभी कभी मन कि यार कहीं चलो बाहर चलते हैं, बट याद नहीं आ रहे होते कि कहाँ जा सकते हैं. तो गार्लैंड में आपके लिए तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट है. यहाँ पर आपको सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स मिलेंगे, रिच करीज, गर्मा गर्म नान, वेलवेटी करीज, यू नो, जहाँ एवरी प्लेट विल फील लाइक अ सेलिब्रेशन. तो यू डोंट रियली नीड टू वेट फॉर एन ओकेजन, जस्ट गो एनी डे एंड सेलिब्रेट, यू नो. सो दिस इज तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इट्स लोकेटेड इन गार्लैंड. एंड द नेक्स्ट वन वाज टेकन फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन.

Well, that was taken from the movie हम आपके हैं कौन. Well, हम तो हैं मधुलिका और देंगे आपका साथ शाम 5 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 9722355555. आज सुन रहे हैं हम बॉलीवुड के वो गाने जिन गानों में एक्ट्रेस ने साड़ी पहनी हो, राइट? तो मतलब वीडियो में जो गाना है उसकी वीडियो में एक्ट्रेस या फिर एक्टर भी, वाई नॉट, वो साड़ी पहने हो. सो अगर ऐसे कोई गाने याद आ रहे हैं तो द स्टूडियो नंबर इज 9722355555. बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग विच इज़ देसी गर्ल, आई एम गोना टेल यू अबाउट PMJ ज्वेल्स. जी हाँ, डैलस द वेट इज़ ओवर. 20 जून को इनकी यू नो ग्रैंड ओपनिंग है. जी हाँ, सो PMJ ज्वेल्स इज नाउ कमिंग टू फ्रिस्को, ब्रिंगिंग ओवर 60 years ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. आप एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन, यू नो. तो प्लीज़ डू जॉइन द ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन स्टार्टिंग June 20th. तो June 20th को फ्रॉम 11 AM टू 2 PM आई एनकरेज दैट यू गो एंड विटनेस एंड एन्जॉय द ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन, एज यू नो यू विल एन्जॉय सम एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज एंड चांसेस टू विन ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसेज. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara, PMJ jo hai is a name trusted by generations. So visit PMJ Jewels Frisco on Main Street and discover jewelry that tells your story. And well, the next song, as I said, is Desi Girl.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
2: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
3: इट्स लॉसन।
2: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
3: इट्स लॉसन।
2: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
4: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
0: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
5: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
0: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
5: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
6: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
7: पापा, फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
8: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
0: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। ऑल दैट योर फादर नीड इज गुड फूड, ग्रेट कंपनी एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। दिस फादर्स डे वीकेंड फ्रॉम जून 19th टू 21st, टेक योर डैड टू द फ्लेवर लाउंज फ्रिस्को। Indulge in refined flavors, elegant dining, and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today. मामू, देखो क्या हो गया।
9: ओ, क्या हो गया?
0: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
9: ओए, जर्मन का कमाल है।
0: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
9: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
10: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
11: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
13: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू। कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
14: अजी, सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
15: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में? सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
16: अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल FunAsia 104.9 FM।

रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, दूंगी आपका साथ till 5 PM. Studio number 972-235-5555, covering in for Kiran. और आज हम सुन रहे हैं बॉलीवुड के वो गाने जिन गानों के वीडियोज में एक्ट्रेस ने साड़ी पहनी हो. So well, here's the next one. Enjoy.

0: Well, that was taken from the movie Om Shanti Om. That was the title track. अच्छा, इस गाने को प्ले करने के पहले मैंने पूछा था आपसे सवाल कि मैं एक गाने का इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रही हूँ एंड यू हैव टू गेस विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. द ट्रांसलेशन वॉज द गर्ल इज सच अ मिस्ट्री, इज शी अ ड्रीम, इज शी रियल और इज शी जस्ट अ ब्यूटिफुल स्टोरी. एंड अगर आपने सही जवाब दिया तो रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से गिव अवे जीत जाएंगे. सो वी डू हैव अ लिस्टनर ऑन with us. Hi, you're live on air.
1: Hi.
0: How are you?
1: Yeah, I'm good.
0: Awesome. What's your name?
1: My name is Tina.
0: Alright, Tina. अरे वाह Tina, आपका नाम काफी कुछ match कर रहा है जो movie से.
1: Movie से.
0: तो बताइए कि कौन से गाने की बात हो रही है?
1: लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है.
0: वाह वाह वाह वाह टीना, जीत गई आप. मतलब आपके तो नाम नहीं आपको जिता दिया.
1: हाँ, बस वो मेरे नाम से ही मूवी थी वो तो.
0: राइट, एब्सोल्युटली. सो कांग्रेचुलेशंस, रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से जीत लिया आपने ये गिव अवे. एंड आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग फॉर आवर लिसनर्स व्हाइल आई टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू.
1: ओके,
0: राइट,
1: थैंक यू.
0: ऑलराइट. Okay, so yes, I'm going to play this Ladki Badi Anjani Hai from the movie Kuch Kuch Hota Hai.

That was taken from the movie कुछ कुछ होता है. और अगर कुछ होता है तो भाई टेक्सास प्राइमरी केयर जाए, बिकॉज वहाँ पर बहुत सी चीज़ें एक ही छत के अंदर आपको मिल जाएंगी. जी हाँ, 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक जो है हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी. और अब वो फ्रिस्को लोकेशन में एक नए नाम से आए हैं, एंड द नेम इज़ लिनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. ये जो लिनॉक्सी मेडिकल है ना, इट ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, साथ ही साथ अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सिटी स्कैंस करवा सकते हैं, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेडस्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ. सातों दिन खुले हैं ये, सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक. यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट्स नीडेड व्हाट्सोएवर. एंड दैट्स लिनॉक्सी मेडिकल फॉर यू इन द फ्रिस्को लोकेशन, एंड दैट्स टेक्सास प्राइमरी केयर.

टेकन फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना. एंड कई बार होता है ना कि आपके पास जो गोल्ड होता है आप कहते हैं कभी इसे अलविदा नहीं कहेंगे. भाई ना कहें अलविदा, लेकिन उसकी जगह अगर आपको कुछ चमचमाता सा नया गोल्ड का कुछ मिल जाए तो बात ही क्या है. मैं तनिष्क की बात कर रही हूँ. तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज. आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपने पुराने गोल्ड को एंड गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड विद डायमंड परचेजेस. यू नो, सो 9 कैरेट से ऊपर के ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0% डिडक्शन भी है. सो टर्न योर ओल्ड गोल्ड इंटू समथिंग न्यू, समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग टाइमलेस. ओनली एट तनिष्क USA. वेल, टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में. PMJ Jewels.
3: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं.
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं.
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं.
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy.
7: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
13: Excuse me, it's called being loyal.
12: It's called being predictable.
13: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
12: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
12: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
12: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
14: Aaja meri gaadi mein baith ja.
15: Baith jao. पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
16: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
15: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
17: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
18: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
19: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
16: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: जिंदगी एक सफर है सुहाना.
20: यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
21: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम 9191 काइज़ावे सुइट 205।

listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. आज सुन रहे हैं हम वो गाने जिन गानों के वीडियो में एक्ट्रेस ने साड़ी पहनी हो. सो स्टूडियो का नंबर एक बार फिर 972-235-5555.

0: Well, this one was taken from Teri Baato Mein Aisa Uljha Jiya. And yes, maine aapse pucha hai sawal. And we do have a listener on air with us. Hi, you're live on air. So, bataiye ki agar ye tino aapko message karenge, to aap kiska text pehle kholengi and aap kiski team mein hai? Are you team Kunal, are you team Ali or are you team Diya and why?
1: So I'm team Ali. I like things planned and prepared. Okay. I'm not one of those impromptu ki chal aisa kar lete hain. Nahi, aisa nahi kar lete hain.
0: Okay.
1: Give me advance notice, you know, ki next week aisa karenge, in 2 days, in a month. So I will definitely open message from Ali first. क्योंकि उसका भी प्लान ऐसे ही कुछ होगा कि यार अपन ने बोला था कभी हवाई जाएंगे तो चल अब हवाई चलते हैं.
0: Might be a reminder from Ali, right?
1: Yeah, and मैं इन लोग के बाद में खोलूंगी क्योंकि इन लोग के मैसेज ऐसे होंगे चल शाम को क्या कर रही है आइसक्रीम खाने चलते हैं ना लाइक
0: चलो बंजी जंपिंग चलते हैं ऐसे थोड़ी होते हैं.
1: हां एंड आई थिंक इफ आई वाज इन माय 20s आई वुड डू दैट बट अभी आई हैव अ डॉटर आई हैव टू प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हर यू नो उसे पिकअप करना है उसे ड्रॉप करना है
0: कोई
1: की कितने बजे उठने के कितने बजे सो आई लाइक इन लोग की मैं सजा अभी नहीं पढ़ूंगी बिकॉज आई इवन इफ आई वॉन्ट टू आई वोंट बी एबल टू डू व्हाट दे आर आस्किंग मी टू डू बट इट वुड बी मोर सेंसिबल अबाउट गिविंग मी
0: क्विकली इफ यू कुड टेल मी योर नेम. Can you tell me your name?
1: Richa.
0: Richa. So, Richa, aap dhyan se sunti rahe because I'm still taking listeners and jiska bhi answer sabse acha hoga, usko hi ye giveaway milega. So, keep listening, okay?
1: Yeah, of course.
0: All right.
1: Thank you.
0: Thank you. Hi, you're live on air.
2: I'm still taking listeners.
0: Yes,
3: hello?
0: You're live on air. Bataiye, aap kiski team mein hai? Team Kunal, Team Ali ya Team Diya? And why?
3: I am from Team Diya.
0: Okay, so Team Rashmika. So, पहले तो बताएं कि अगर इन तीनों का text आएगा तो are you going to open Rashmika's text first?
3: हाँ, क्योंकि या आपने जैसा बोला कि वो movement में रहते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद का हाँ, शायद का है कि वो इन जो उनके मन में है, हार्ट में है, वैसा करेंगे तो वो कंसिस्टेंट रहेंगे अभी
0: right.
3: थोड़ा आगे तक भी
0: right.
3: और ऐसे ही वो प्लान्ड है कीर्ति सलोन, तो वो प्लानिंग है तो वो कल भी रहेगी प्लानिंग बट जो चीज मूवमेंट में है वो अगर
0: वो
3: अभी मिस कर दी
0: right.
3: तो वो मिस कर दी.
0: अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग. व्हाट्स योर नेम?
3: मैं समर्थ खरे.
0: Samarth, so Samarth, aap sunte rahe because I'm still taking callers and let's see who gives the best answer, okay?
3: Sure.
0: All right. Thank you.
3: Thank you.
0: Hi, you're live on air.
4: Hello.
0: So, bataiye, which team are you? Are you team Kunal, team Ali or team Diya and why? And agar in teenon ke text aate hain, so kiska text aap pehle padhengi and why?
4: Okay, so I'm like team Kunal because I'm a big fan of Shahid Kapoor, so fan following ke kaaran Kunal.
0: Ah, acha, biased hai aap. Okay, okay.
4: So, at the same time, no, like at the same time, wo apne dil ki sunta hai, as you mentioned, so wo that matters. Ki haan, jo hai wo. और फिर रही बात मैसेज की तो अगेन आई गो फॉर द कुणाल टू सी कि क्या क्या मैसेज आया दिल के आज क्या बात करिए. फिर आफ्टर रीडिंग शाहिद मैसेज आई विल बी लाइक अब लॉन्ग वीकेंड आने वाला है चलो कृति सनन का भी देख ही लेते हैं कुछ प्लान है क्या.
0: चलो शी कम्स सेकंड. ओके, सो व्हाट्स योर नेम?
4: माय नेम इज भाग्यश्री.
0: कैन यू रिपीट दैट?
4: It's
0: Bhagyashree. Bhagyashree. Arey vaad, ab to aap team Salman hone chahiye. Okay, Bhagyashree, aap sunti rahiye because I'm still taking callers on air and jiska bhi answer best hoga, I'll be announcing it in just some time, okay?
4: Sure, thank
0: All right,
4: you.
0: Thank you for participating. Oops, the call went off. So, well, hi, you're live on air. Hi, can you hear me? Can you hear me?
5: Hi.
0: Hi, how are you?
5: Hello?
0: Can you put me off the speaker and tell me which team are you going to be? Are you team Kunal, Ali or team Diya and why? And agar ye teeno aapko text karte hain, yani ki Shahid, Priti aur Rashmika aapko text karte hain, to sabse pehle kiska text uthayengi aur why?
5: आपने बहुत उलझन में डाल दिया. एक तो मैं रश्मिका की बिल्कुल बड़ी फैन नहीं हूँ.
0: अच्छा.
5: लेकिन मैं स्टिल आई एम गोना पिक हर
0: बिकॉज़
5: आई एम स्पॉन्टेनियस.
0: आई एम स्पॉन्टेनियस.
5: यस, आई लिव इन द मोमेंट. और okay. मैं तो अभी बोर हो रही हूँ ना, तो मुझे अभी चाहिए कि कोई मुझे बाहर लेके जाए.
0: राइट, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है. तो आप अपना नाम बताएं प्लीज.
5: मेरा नाम है स्वप्निल.
0: स्वप्निल. Alright, Swapnil, so I'm
5: That's really interesting.
0: Yeah. So, okay, Swapnil, aap sunti rahe, because I'm still taking callers on air, and agar jiska bhi answer sabse best hoga, I'll be announcing that name very soon, okay? So just keep listening.
5: Bye.
0: All right. So yes, I am still taking calls. Question ये है कि अगर आपको शाहिद कपूर यानी कि कुनाल या कृति सैनन यानी कि आली या फिर रश्मिका मंदाना यानी कि दिया टेक्स्ट करती हैं तो आप किसका टेक्स्ट पहले खोलेंगे एंड क्यों? एंड दूसरा ये कि आप किस कैरेक्टर से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं? सो डू गिव मी अ कॉल. द स्टूडियो नंबर इज 972-235-5555.

0: पर मैंने नहीं छोड़ी है वो बात। बात ये थी कि मैंने पूछा है आपसे सवाल कि आप कौन सी टीम में हैं। आर यू टीम शाहिद यानी कि टीम कुनाल, आर यू टीम कृति यानी कि टीम एली, या टीम रश्मिका विच इज टीम दिया। एंड अगर ये तीनों आपको टेक्स्ट करते हैं तो आप किसका टेक्स्ट पहले खोलेंगे? एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस। हाय, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: Hi, this is Eva.
0: हाय, सो टेल मी हूज टेक्स्ट वुड यू ओपन फर्स्ट एंड वाई, एंड हूज टीम आर यू ऑन?
1: शाहिद, शाहिद, शाहिद.
0: अच्छा जी, तो आप शाहिद की बिग टाइम फैन है, एंड वाई?
1: Big time because I'm a dancer and Shahid dances. Ritik and Shahid, both of them dancers dance so well. And Shahid is really loyal to his wife. When he broke up with Kareena, I was heartbroken for Shahid.
0: Right.
1: I was a little bit upset for
0: Okay,
1: Kareena.
0: that's fine. And can you give me your name one more time?
1: Lisa.
0: All right, so I'm going to write down your name and keep listening because I'll be announcing the winner really soon, okay? All right, I'll take the next caller on air. Hi, you're live on air. What's your answer?
2: हेलो हेलो,
0: Hi,
2: मैं
0: you're live
2: सईदा
0: on air.
2: बोल रही हूँ. हाय
0: All
2: जी,
0: right, फरीदा जी, तो बताइए आप किसकी टीम में हैं?
2: मैं शाहिद कपूर की.
0: अरे भाई, सब शाहिद के ही फैन लग रहे हैं मुझे यहाँ पे. अच्छा, एंड सो व्हाई, अगर इन तीनों को, ये तीनों अगर आपको टेक्स्ट करते हैं, शाहिद कपूर, कृति सैनन, रश्मिका मंदाना, तो आप किसका टेक्स्ट पहले खोलेंगी और क्यों?
2: शाहिद कपूर का
0: एंड व्हाई?
2: वो इसलिए कि वो शुरू से ही पे मुझे बहुत अच्छे लगे. फर्स्ट फिल्म से ही बहुत अच्छी एक्टिंग करी और बहुत अच्छा मुझे लगा ये शाहिद कपूर.
0: अच्छा, ओके, सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग दिस मूवी कॉकटेल 2.
2: जी जी
0: ऑसम
2: इंशाल्लाह.
0: ऑसम, तो मैंने आपका नाम लिख लिया है. आई विल बी अनाउंसिंग द
2: जी
0: नेम ऑफ द
2: जी
0: विनर रियल सून, सो कीप लिसनिंग.
2: हाँ, और
0: ऑल
2: जब
0: राइट,
2: भी मेट में तो बहुत ही अच्छा काम
0: आई
2: किया
0: टोटली
2: जबरदस्त.
0: अग्री, दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट मूवी. कितनी बार भी देख सकती हूँ और जितनी बार देखती हूँ
2: बहुत.
0: उतनी बार हंसी आती है.
2: हाँ,
0: सो या, थैंक यू
2: और
0: फॉर
2: उसमें
0: कॉलिंग.
2: जिसमें राजा महाराजा बने हैं वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे. वो कौन सी पिक्चर थी,
0: अच्छा
2: एम
0: अच्छा
2: से नाम
0: समझ
2: था
0: गई
2: उसका,
0: मैं.
2: याद नहीं आ रहा.
0: पद्मावत, पद्मावत,
2: हाँ?
0: पद्मावत,
2: बदना क्या
0: नहीं,
2: एम
0: इट्स पद्मावत राइट, जिसमें दीपिका पादुकोण
2: पद्मावत
0: एंड
2: पद
0: शाहिद
2: ओ हाँ
0: कपूर
2: एम
0: थे.
2: से नहीं था, पद्मावत
0: राइट राइट राइट. सो वेल, थैंक यू फॉर
2: पद्मावत.
0: योर कॉल एंड कीप लिस्निंग बिकॉज़ आई विल बी अनाउंसिंग द विनर आफ्टर दिस नेक्स्ट सॉन्ग. सो यस, द नेक्स्ट वन इज गंदी बात, अगेन टेकन फ्रॉम द मूवी आर राजकुमार.
3: ओके.

मैं करने जा रही हूँ एक अच्छी सी बात. विनर हो गया है चोजन एंड द नेम इज द नेम ऑफ द विनर इज स्वप्निल. सो स्वप्निल, इफ यू कुड कॉल मी बैक, स्टूडियो नंबर 972-235-55, एंड सो दैट आई कैन टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू. सो स्वप्निल, इफ यू आर लिसनिंग, प्लीज डू गिव मी अ कॉल बैक. द स्टूडियो नंबर इज 972-235-55-55.

ऑलराइट, अब मेरे पास एक और गिव अवे आ गया है आपके लिए. जी हाँ, हियर इज योर चांस टू विन अ स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ. दैट्स योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड ऑल योर देसी नीड्स. India Bazaar is located at 5152 Quadrant Way in Fort Worth for people living in Fort Worth, Keller, Hurst and Hasley. तो भाई अब सवाल मैं बताती हूँ आपको. आप जीत सकते हैं एक एक ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ. तो आपको मुझे कॉल करके बताने हैं कोई भी बॉलीवुड के तीन ऐसे गाने जिन गानों में एक्टर ने एक्ट्रेस ने साड़ी पहनी हुई है. थोड़ा सिंपल सा सवाल है. एंड यस, द नंबर वंस अगेन टू द स्टूडियो इज 972-235-5555.

0: Well, what a झुमका that was, taken from रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. अच्छा, मैंने पूछा था इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ की तरफ से जो गिव अवे है, विच इज़ यू कैन विन अ ग्रोसरी हैम्पर. तो सवाल ये था कि आप मुझे कॉल करके बताएं कोई भी बॉलीवुड के तीन गाने जिन गानों में एक्ट्रेस ने साड़ी पहनी हो. सो वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाई, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Yes, ma'am. My name is Amin.
0: हाई अमीन, हाउ आर यू?
1: Good, good. How are you?
0: I am doing great. Thank you for asking. So, बताइए कौन से तीन गाने हैं?
1: It's Tip Tip Barsa Pani.
0: Okay.
1: तुम ही देखो ना.
0: क्या बात है?
1: And then तेरे मस्त मस्त दोने.
0: Awesome. Very well played, Amin. And thank you so much for participating. You won this hamper. I'm going to take you off air and take some details from you. While I'm going to play a song from Mehuna, as that's a song request. बहुत देर से वो वेट कर रहे हैं. So I'm going to play this one for them. And then I will play your Tip Tip Barsa Pani very soon. Okay?
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Bye-bye.

वेल मैं बता सकती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ कार या ट्रक एक्सीडेंट या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट. आपको कॉल करना है अटर्नी ओमर ख्वाजा को, क्योंकि ना केवल ये केस आपका लड़ेंगे बल्कि इंश्योरेंस कंपनी से भी डील करेंगे, एंड आप इन्हें तभी पे करेंगे जब आप अपना केस जीत जाएंगे. राइट, सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप अटर्नी ओमर ख्वाजा को कॉल करें. द नंबर इज 4693005046 और विजिट अटर्नी ओमर.com. That's attorneyomar.com.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ।
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ।
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ।
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
6: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
3: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
7: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
8: इट्स लॉसन।
7: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
8: इट्स लॉसन।
7: डैडी व्हाट इज द लॉ?
9: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
10: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
13: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
14: क्या?
13: सैलरी बंद हो जाती है
14: और बिल्स बंद नहीं होते।
13: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
14: मतलब
13: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
3: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
15: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
16: Calculating route, rerouting, rerouting.
15: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
16: Location upgraded, now heading to India Bazaar Fort Worth.
15: क्यों?
16: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं, डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत, find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
15: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
16: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
17: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
18: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
19: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
20: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
21: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

You're tuned in to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. सुन रहे हैं हम वो गाने जिन गानों की वीडियोस में एक्ट्रेस ने पहनी हो साड़ी. So the studio number once again is 972-235-5555. This is Madhulika. I'll be with you till 5.

taken from Bajirao Mastani, that is Pinga. And yes, aaj hum sun rahe hain sham 5 baje tak wo gaane jin gaanon ki video mein actress ne saadi pehni ho. And agar saadi ki baat ho rahi hai to batau that saadi is one of the world's oldest surviving garments. Pata hai, kehte hain saadi has been worn in India for over 5000 years, making it one of the oldest continuously worn outfits in the world. और आपको बताऊं कि यही एक साड़ी के 100 तरीके हैं, मे बी 100+ डॉक्यूमेंटेड वेज टू ड्रेप इट यू नो अक्रॉस इंडिया. जैसे हर रीजन की एक अपनी यूनिक स्टाइल है. जो कुछ कॉमन कुछ जो स्टाइल्स मैं जानती हूँ आपको बता सकती हूँ. एक तो होती है नेवी स्टाइल, विच इज़ लाइक द मोस्ट कॉमन वे ऑफ वेयरिंग अ साड़ी. देन देर इज इज बंगाली स्टाइल, राइट. देन देर इज गुजराती स्टाइल एंड कुर्गी स्टाइल. एंड देन देर इज दिस महाराष्ट्रियन नवारी स्टाइल. सो बहुत सी स्टाइल्स होती हैं वही एक साड़ी को ड्रेप करने की.

वेल दैट वॉज टुकुर टुकुर देख एंड यस, आज हम सुन रहे हैं वो गाने जिन गानों की वीडियो में जो एक्ट्रेस है शी हैज़ वॉर्न अ साड़ी. सो हियर इज द नेक्स्ट वन एंड दैट्स गोविंदा फैंस रिक्वेस्ट. हियर इट इज, एंजॉय.

आई रिमेम्बर जब ये गाना आया था ना, तो मेरी दादी जो किसी की नानी भी थी, ये शी यूज टू हेट दिस सॉन्ग. ये मतलब ये क्या बात हुई कि नानी क्यों मरेगी भाई. तो शायद जब भी गाना मैं सुनती हूँ मुझे वही बात याद आती है. एंड अगला गाना प्ले करूँ विच इज़ अ सॉन्ग रिक्वेस्ट, उसके पहले मैं एक और मज़ेदार बात बताना चाहूँगी साड़ी को लेके. यू नो साड़ी इज़ प्रॉब्ली दी ओनली आउटफिट दैट कैन रियली मेक समवन लुक रेडी फॉर अ वेडिंग और अ बोर्ड मीटिंग और अ फेस्टिवल या फिर कोई फैमिली गैदरिंग, ऑल विद द सेम 6 yards ऑफ फैब्रिक.

वेल, दिल तो जरूर दे दिया था जब ये चांदनी मूवी आई ना. सो दैट आइकॉनिक येलो साड़ी वॉर्न बाय श्रीदेवी, वेल इट बिकेम सो पॉपुलर दैट इट इंस्पायर्ड फैशन ट्रेंड्स अक्रॉस इंडिया फॉर इयर्स. और आज भी कितनी बॉलीवुड मूवीज में जो हीरोइंस हैं, चाहे भले ही वो बर्फ के पर्वतों के बीच में हो, बट एक शिफॉन साड़ी जरूर पहनती हैं.

Well, that was a lungi dance taken from the movie Chennai Express. And well, this is Madhulika. And always, it's always, always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way. But time ho gaya hai mera aap se bye-bye kehne ka. Lekin aap kahin jaiyega nahi. Do stay tuned in to 104.9 FM, Fun Asia Radios. As yahan hamare jo shows hain, wo aapko entertain karte rahenge. Coming up next is Banda Bindaas, Marvin Das. Main milungi kal dopahar 2:30 baje. Ji haan, kal fir se 2:30 se 5 hoga mera aur aapka saath. वैसे मैं जस्ट चिल लेकर आती हूँ एवरी सैटरडे एंड संडे 10 AM टू नून, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. सो वेल, कल 2:30 बजे मिलूंगी आपसे. वेल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Shubh Dina Pahuncha Hai. एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में. PMJ Jewels.
9: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
10: जिस बात का डर था वही हुआ. लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन.
11: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई. लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी. अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना. एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू. कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर डॉट कॉम. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
16: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
15: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
16: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
15: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
16: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
17: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
18: क्या बताऊं? इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
17: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
19: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
15: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
19: सुनीता,
3: तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
20: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
3: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
20: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
21: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
22: Hi, I'm Rajkumar Rao. And you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

A very good evening to the listeners of Fun Asia Radio 104.9 FM. Welcome to the Bindaas Show, only on this station, which is for you. It's been a must. 20 plus years serving the community, and that is what we stand for, bringing the community together. I am Banda Bindaas, Marvin Das, 5 to 7, Monday to Thursday. I stay with you with you. And today is the last day for me for this week, because Thursday is coming. It's a 4-day job. बाकी तीन दिन थोड़ा इधर काम थोड़ा उधर काम और बाकी आप अगर शादीशुदा हो तो पता है आपको छुट्टी हो तो बीवी के काम जो है वो कदम नहीं होते भाई और होने भी नहीं चाहिए आपने उनसे शादी की है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है तो निभानी तो पड़ेगी I want to thank the Almighty for yet another day, yet another evening right here on Fun Asia, जहाँ पे मैं आ सकता हूँ जी आपके साथ कुछ बातें करने अपनी कुछ आपकी सुनने studio lines are always open for you all 972-235-5555 is the number to the studio और birthdays anniversaries हमेशा की तरह welcome but like I said the last three days of my show that this week we are celebrating men's health week and that started on the 15th of June और आज भी हम उस पे focus जरूर करेंगे see sometimes we neglect ourselves क्यों हम सोचते हैं यार कि हाँ हाँ थोड़ी दर्द ही है चेक करा लेंगे या पीठ में दर्द ही हो रहा है चेक करा लेंगे एंड दैट लीड्स ऑन टू अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स एंड दैट हैपन्स व्हाई बिकॉज हमने अपनी लाइफ में बाकियों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है जैसे कि वाइफ हो गई बच्चे हो गए एंड दैट इज़ गुड टू डू बट अगर इंजन ही गाड़ी का ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी में पैसेंजर बैठ के जाएंगे कहाँ एसी नहीं चलेगा गाड़ी का तो गाड़ी किसी काम की नहीं तो इसी तरह समझ लें कि आपका अपना बॉडी आपका अपना शरीर एक वेसल है And that vessel keeps everything around it happy. Chahe wo aapke bachche, biwi, dogs, kids, your job, your passions, your singing, your food. Is sab ko enjoy karne ke liye, aapko sehat achhi rakhni bahut zaruri hai. Khair, is baare mein aur baat karenge with a special guest who's going to be joining me right after this next track. This part of the show is brought to you by attorney Omar and his team. Waise toh main wish karta hoon ki aapko kabhi bhi accident mein involved na ho aap. But if you get in that trouble, One name to remember is Attorney Omar. That is attorneyomar.com on the website. Let's take you to the movie that everybody's talking about, Cocktail 2.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Apni roots bhi aur Texas ka swag bhi dono ek saath ek hi jagah HEB mein. Royal Sona Masuri rice ho, Nanak paneer ho ya Parle Ji biscuits. Wahi desi taste jo dil ko ghar jaisa feel de. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo sirf yahi milte hai. Ek hi trip, ek hi store aur sara saman done. To aaj hi jaiye apne nearest HEB par aur le jaiye apne traditional aur Texan favorites ek saath. HEB, here everything's better.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: वेट, इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ अगस्त ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
8: लिया।
7: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
8: नहीं आया।
7: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
9: Visit www.sanadainc.com today.
10: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th. Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
11: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
12: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
11: सच में, एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
12: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सोल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
11: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
12: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
11: नंबर बोल जल्दी।
12: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
13: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
14: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
15: Excuse me. It's called being loyal.
14: It's called being predictable.
15: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
14: And what's so special at Neon Cactus?
15: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
14: Not bad.
15: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
14: Okay, this I didn't expect from you.
15: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
9: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. DuckTime removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
16: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था।

0: cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Ducktime.
1: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
2: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनकी जिम्मेदारी.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

सौ गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से, कितना 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से, फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते बैंगन सा मुंह बनाने से।

0: भैया 100 गुना बढ़ जाती है भैया शक्ल मुस्कुराने से, काय को बैठे बैंगन सा मुंह बनाने से हटते नहीं यार तुम लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। मुंह बनाओ जैसा बना हुआ है वैसा ही बनेगा। अब ये थोड़ी है कि बंदे भी चले जाएंगे बनाने मुंह, इसकी कोई दुकान नहीं है, ये सिर्फ चांद है, चांद जो किसी भी डायरेक्शन से निकलता है, क्योंकि जो ब्यूटी पार्लर है वो हर डायरेक्शन में होता है ना।
1: नेकी प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये।
0: चलो ये छोड़ो, मैं आपको ज्ञान की बात बताता हूँ। बरसात की एक रात तभी होती है जब रात में बरसात होती है।

0: 5:27 in the studio clock. This is your evening drive time show right here on Fun Asia Radio 104.9 FM. मैं हूँ जी बंदा बिंदास with you till 7 o'clock. और इतनी अच्छी बात है ना, मुस्कुराया करो यार, चेहरा अच्छा लगता है. लेडीज एक बारी स्माइल करिए प्लीज मेरे लिए. एंड मैन एक बारी आप भी अपने आप को शीशे में देखें इस मेंस हेल्थ वीक. ठीक लग रहे हो ना, कोई आंखों के नीचे कालापन तो नहीं आया? अगर आया है तो पानी का सेवन ज्यादा कीजिए एंड मेक्स योर सेल्फ हाइड्रेटेड. अच्छे अच्छे खाने खाएं, प्रोटीन ज्यादा लिया करें एंड अपना चेकअप बार बार जरूर कराया करें. चलें जी एक गाने की तरफ चलता हूं. एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय एजी फिनटैक्स. इफ यू लुकिंग टू गेट योर टैक्सेस डन, वन प्लेस दैट आई रेकमेंड इज एजी फिनटैक्स, द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म. Not only that, they will also help you build your retirement plan. And I think that's something important.
1: As I saw lights shining bright, and all at once I knew I was gonna love you.

0: वंडरफुल ट्रैक, वन ऑफ द ट्रैक्स दैट वी ऑल रिलेट टू. यार मतलब पिक्चर तो हम सारे ही इंजॉय करी थी, नो डाउट. जो जीता वही सिकंदर. एंड दिस सॉन्ग ऑफ कोर्स हैज अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द 80s किड्स एंड उससे 90s किड्स. एंड आई थिंक इन जनरल ये गाना इतना प्यारा है कि सबको ही इस गाने से प्यार हुआ है. फॉर नाउ इट इज़ टाइम टू टॉक टू मिस्टर पंजवानी विद द SBA लोन एक्सपर्ट्स, एंड ही इज़ द वन दैट कैन रियली रियली हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस. एंड आई हैव डेल्ट विद हिम पर्सनली, कैन टेल यू दैट ही डज नो व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ द क्विकेस्ट इन द बिजनेस. मुझे तो कभी कभी लगता है कि जादूगर है लोन इंडस्ट्री के. बट लेट मी वेलकम दिस मजिशियन राइट हियर. गुड इवनिंग टू यू पंजवानी साहब, हाउ आर यू?
1: I'm doing great. Good evening to you and all listeners.
0: Thank you, sir. मुझे ये बताइए, business loan approval के लिए सबसे important होता क्या है? No, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि credit score है, collateral है, cash flow है. According to you, जो सबसे important चीज़ है, वो क्या है साहब?
1: Actually, not just according to me, but underwriter or lender, the most important part. Surprisingly, सबको ऐसा लगता है कि credit score is more important, but the true answer is कैश, कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस. जैसे हमेशा बोलते हैं ना कैश इज किंग, वैसे बिजनेस लोन में कैश फ्लो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. द 8 out of 10 पीपल व्हेन दे कॉल अस, वी टॉक अबाउट लोन कि मुझे ये लोन चाहिए, और सबके जहन में एक ही बात होती है कि क्रेडिट स्कोर मेरा अच्छा है. तो अभी जिसका स्कोर 750-800 है, दे अज्यूम ओ माय स्कोर इज गुड सो आई विल बी एलिजिबल फॉर द लोन. सम पीपल हुज क्रेडिट स्कोर इज नॉट सो गुड, 600 है, 625, दे अज्यूम कि मेरा स्कोर बहुत कम है तो मुझे लोन मिलेगा ही नहीं. और काफी लोग तो क्रेडिट स्कोर के चक्कर में कॉल ही नहीं करते कि मेरा स्कोर बहुत कम है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज डू नॉट वरी अबाउट क्रेडिट स्कोर. आई एम सेइंग दिस अगेन, डू नॉट वरी अबाउट क्रेडिट स्कोर. इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, यू आर लुकिंग फॉर अ लोन. Let's say, for example, अगर आपका मंथली पेमेंट लोन का $5,000 है, एनुअल पेमेंट $60,000 हो जाता है. अगर आपका बिजनेस उतना पैसा बना रहा है जो $7,000 की एनुअल पेमेंट को कवर कर सके, या जो भी आपकी लोन है अमाउंट है 5 lakh, 15 lakh, 2 million, जो भी आपकी लोन पेमेंट है, उतना पैसा अगर आपका बिजनेस बना रहा है, उतना कैश फ्लो आपके बिजनेस में है, डू नॉट स्ट्रेस अबाउट क्रेडिट स्कोर. कैश फ्लो इज वॉट एन अंडरराइटर इज लुकिंग फॉर. And time and time again, people always are stressed and worried about. It's not that credit is not important, but the most important point is if you have a 800 score and if your business is losing money, you're not going to be eligible for the loan. And if your score is 620 or 630 and your business has good cash flow, you will get the loan. So I wanted to clarify this because this is a very common question. 8 out of 10 people always ask us, "Okay, score ki kya requirement hai? Aapki ye batao, mujhe itna loan chahiye." पहले ये बताओ कि आपका बिजनेस का कैश फ्लो क्या है.
0: That is Shahid Panjwani with the SBA loan expert. 8177863338 इनका नंबर है. Give him a call and get yourself the loan that you desire. Let's go to this next track. इसके बाद लेंगे छोटा सा commercial break. This is a different type of track that I like. मेरे type का music है, सुनिए आप भी.

0: यार ये फिल्मों वाले ना मुझे वैसे समझ नहीं आते कि हर फिल्म में ना ज़्यादातर इन्होंने यही दिखाया है कि जो लव स्टोरियाँ होती हैं वो बेवफाई में ख़त्म होती हैं। अब ये बात मतलब ठीक है, किसी का अपना फेथ हो सकता है, हमें तो लगता है कि लव स्टोरियाँ सिर्फ बेवफाई में नहीं ख़त्म होती ब्रो, कुछ लव स्टोरियाँ जो हैं वो डिफरेंट तरीके से भी ख़त्म होती है। जैसे कि कुछ लव स्टोरियाँ जो हैं वो बीवियों के हाथ मोबाइल फोन लगने से भी ख़त्म होती हैं।
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
4: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty. I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
5: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
6: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
7: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
6: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
8: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
8: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
10: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
10: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
6: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
13: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
14: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
15: बेटा, 95% आए?
16: हाँ मम्मी।
15: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
9: मेरा?
15: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
9: वो
17: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
18: कहां गया, कहां रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहां है?
19: कौन सा?
18: अरे वो गोल्ड वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
19: अरे सारे तो सेम है।
18: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
19: ओ हाँ, ये तो अलग है।
17: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर। विजिट श्रीकृष्णा.com।

0: वाह वाह वाह वाह. एंड यू नो व्हाट, अगर आपके पास डेट की प्रॉब्लम है और उसमें फंसे हुए अभी तक आप कह रहे हैं ओए होए किथे आ गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, बट अगर आप करेंगे ना एक बारी उरा डेट वालों से बात, तो आप भी बोलेंगे वाओ, क्योंकि इतना सोल्यूशन आपके लिए लेके आते हैं. 60% तक आपका कर्जा माफ करवा देते हैं, उसके बाद जो बाकी बचा है उसकी पेमेंट बनवाते हैं. कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये मैं नहीं अमन बताएंगे. गुड इवनिंग अमन, हाउ आर यू?
1: गुड इवनिंग वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार. गर्मा गर्म महीना है तो, लेकिन पैसे की गर्मी नहीं रहनी चाहिए. वो इस तरह से कि अगर आप ड्रेनेज रोक सके, यानी कि अपने पैसे की बर्बादी रोक सके, क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट दे देकर आप अपना पैसा खराब कर रहे हैं. बिल्कुल सही सुना आपने, क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट देने से क्रेडिट कार्ड उतरता नहीं, सिर्फ टाइम पास होता है. तो अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो अगले 30 साल तक करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट से तो उतरने वाला नहीं है. 40% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं. ड्राइव करते करते आप ये ध्यान से सुनिए कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट अगर आप दे रहे हैं तो आप रुक जाइए. अगर अभी भी ड्यू है तो इस महीने की पेमेंट करने से पहले उरा को कॉल कर लीजिए. आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ करवाया जा सकता है नेगोशिएशन के जरिए, सेटलमेंट के जरिए. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपके पर्सनल लोन्स हैं या फिर गाड़ी जो रीपोजेस हो गई है, बैंक को उठाकर ले गया बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, या फिर गाड़ी टोटल हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई और रीजन से पानी चला गया, तो कोई भी रीजन से गाड़ी टोटल हो जाती है तो, लेकिन लोन तो स्टिल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योरेंस थी या नहीं थी, लेकिन उस तरह के डेट को भी नेगोशिएट किया जा सकता है और आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवाया जा सकता है. तो सिंपली करना है आपको ये कि इस तरह के लोन से परेशान मत होइए, मिनिमम पेमेंट दे देके अपने आप के पैसे बर्बाद मत कीजिए. कॉल कीजिए, सिंपल कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर 1-888-888-9914 1-888-888-9914, और आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो सकता है. या फिर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं डायरेक्टली. कॉल मी ऑन माई सेल फोन 9167763555 9167763555. अगेन 9167763555 हमारी वेबसाइट है www.ura.org. तो मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल करेंगे तो आधा कर्जा तो माफी हो जाएगा. तो कॉल जरूर कीजिए.

0: पॉइजन बेबी, पॉइजन बेबी, ये तो ठीक है बेबी, बट ये जो लोग पान खाते हैं ना, उनका जैसे पंकज त्रिपाठी की तरह अगर बात करना चाहते हो तो थोड़ा सा ऐसे कर लें जैसे कि आप गुटखा खा रहे हैं। अब जैसे एक शेर है आपके लिए बहुत बढ़िया, कहते हैं चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, अगर एक से कर ली मोहब्बत तो हजारों का क्या होगा। सिर्फ शायरी सुन के वाह वाही करनी है, इसको प्रैक्टिकलिटी में ना ले जाना कहीं गलती से, ठीक है ना।
1: सारेगामा।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahu.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewel in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, phir pooja ka saman, gifts bhi kharidne aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
9: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
10: Kahan? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, pooja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
11: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
17: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
18: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
17: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
19: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
20: इन प्लेनो।
19: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो।
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
21: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
22: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
23: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
24: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
25: मामू, देखो क्या हो गया।
26: ओ, क्या हो गया?
25: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
26: ओए, जर्मन का कमाल है।
25: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
26: ओए नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी 9726906623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
22: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
0: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: इसमें जो सिंगर है उसे रिहाना बोलो, बिंदास बोलो, बिंदास बिंदास बोलो, बिंदास बोलो, बिंदास.
1: Yes, yes, yes, yes, yes, indeed. Bindas Bolo Ji, because this is the Bindas Show right here on Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. 6 baj ke 6 minute ho chuke hain ji, sham ke time, matlab studio ki ghadi mein. It's 6:06 and I'm going to be with you till 7 o'clock. 6, वैसे 6 foot 6 inch kad hota agar to bahut hi zyada lamba ho jata na. Mera ek dost hai, uski height hai, Dipendu hai uska naam, Lambu kehte hain usko. He's 6 feet 7 inches tall, man. मतलब मेरी एक फ़ोटो है, आई एम स्टैंडिंग ऑन अ बन्नी. बन्नी मतलब फुट, एक स्टेप समझ लो अप फ्रॉम द मेन फ्लैट ग्राउंड या पत्थर जो भी है, एंड वो नीचे खड़ा है. और उसके बाद भी मैं उसको ऊपर देख रहा हूँ तो इतना गैप है भाई. पर क्या फ़ायदा इतनी लंबी हाइट का, उसको लड़की नहीं मिल रही. बट मेरे साथ देखो सब कुछ सही चला, पैर ज़मीन पर लग रहे हैं, इतना ही बहुत होना चाहिए यार. कहते हैं कि अगर लोग है ना कंप्लेंट करते रहते हैं, घर छोटा है, घर छोटा है, घर छोटा है. अगर आपको आपका घर छोटा लगे ना, तो एक काम करिएगा, सिंपली जाके पोछा लगा के देखिए घर का, समझ आ जाएगी आपको. Birthdays, anniversaries are always welcome on our station, and if you're celebrating something, I would love to be a part of that. 972-235-5555 is the number to the studio. 18th of June was the date in the year 1847 when an American photographer, Thomas Martin Easterly, takes the earliest known photograph of lightning using the ek process tha ji jisko bolte the daguerreotype process in St. Louis, Missouri. And this was on today's date, 18th of June, 1847, when the first photograph of lightning was officially taken. Taking you to mascara from Main Vapas Aunga. And indeed, is gaane ke baad bilkul aunga.

0: ऑलराइट, आजा वे आजा एंड मेरे सवाल का जवाब मुझे बता जा। सवाल ये है कि भैया फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, ये हैप्पी वाइफ डे क्यों नहीं होता है? क्रिएटिव आंसर देना है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ठीक है? जैसे परेश रावल कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग से काम लो, तो वैसे ही थोड़ा दिमाग से काम आपको लेना है। कौन है मेरे साथ? गुड इवनिंग फनेजा, हु इज दिस?
1: हेलो, दिस इज शिवानी।
0: हाय शिवानी, हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग गुड टुडे।
0: यार आपका नाम ना संजय दत्त ने खराब कर दिया, मुझे मजा नहीं आया ये बात सुन के ना, बिल्कुल ही ना, बिल्कुल उसकी बात मुझे पसंद नहीं आई।
1: नहीं, मुझे तो अच्छा लगा कि और ज्यादा खराब नहीं किया, ठीक ठाक ही था गाना।
0: चलो कोई बात नहीं, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, जिसको समझना है वो जो समझना है समझने दे। शिवानी ये बताओ कि ये हैप्पी वाइफ डे क्यों नहीं होता यार?
1: सी, आई विल रिलेट इट विद दिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वुमन के लिए कुछ बोला नहीं है, मतलब वुमन इज ऑलरेडी परफेक्ट। तो
0: ये बात है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। और यू नो मैं ये बता के अपनी
1: वाइफ, वुमन इज ऑलरेडी हैप्पी, उनके लिए अलग से जरूरत नहीं है।
0: अलग से जरूरत नहीं है, अलग से जरूरत नहीं है। ओके, मैं भी अपनी बीवी को कहता हूँ कि जब उससे गलती हो जाती है, मैं कहता हूँ आपकी गलती नहीं है मैडम, ये तो गलती की गलती है कि वो हो गई। खैर आगे चलता हूँ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। गुड इवनिंग फनेशा, हु इज दिस? रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो, रेडियो वॉल्यूम कम कर लो, मेरे को ब्लूटूथ से निकाल लो, नहीं तो बात नहीं होगी, आगे जाना पड़ेगा छलांग मार के। शूइंग कर दो, कर कर। हेलो सर, मैं कह रहा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ मालिक, ब्लूटूथ से निकाल लो मालिक।
2: पता नहीं चला मेरा लाइन कब आ गया, सॉरी।
0: कोई बात नहीं सर, मेरा ही नहीं पता चला आपको, उसका तो पता चला था जब उसने लाइन आ गई थी आपकी, है ना?
2: तो मेरा आंसर ये है कि डेली वाइफ का डे है, मतलब हमेशा उनके लिए हम लोग करते हैं।
0: उनके लिए हम करते हैं, वाह वाह, क्या करते हैं वो मुझे बताना नहीं। उसमें पानी इस्तेमाल होता पानी और मांजा इस्तेमाल होता है क्या? पता है आपको ना, वैसे वैसे एक बात बताऊं, नाम क्या था आपका?
2: पार्थ।
0: पार्थ, पार्थ आपको एक बात पता है कि ये ना हमें रिक्वेस्ट डालनी है सारे हस्बैंड्स को मिलके। ये किसको रिक्वेस्ट डालनी है? हमें उनको रिक्वेस्ट डालनी है जो वो बर्तन धोने का साबुन बनाते हैं ना, वो बार बार ये लिखते हैं, नए जैसा चमक जाता है, नए जैसा हो जाए। उनको क्या पता परेशानी हम जैसों को आ जाती है, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी हु वी हैव नेक्स्ट विद अस। गुड इवनिंग फनेजा, हु इज दिस? हेलो, चले गए कहीं, कोई बात नहीं, इधर वाले के पास चलते हैं। गुड इवनिंग फनेजा, खिड़की खुली है आपकी? हेलो,
3: हेलो,
0: हाय, आपकी तो विंडो खुली है। गुड इवनिंग, कौन है? हेलो, गुड इवनिंग, आई कैन हियर यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं, ये वाली खिड़की तो खुली है जी, कैसी हैं आप?
3: मैं कहूंगी कि ऑन लाइटर नोट, यू नो, मेक यू नो वाइफ हैप्पी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
0: मेकिंग वाइफ हैप्पी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अर्जुन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वन। लेट्स सी और कौन है मेरे साथ। गुड इवनिंग फनेजा, हु इज दिस?
4: हेलो, दिस इज सुनीता।
0: सुनीता, रेडियो का वॉल्यूम नीचे होता है? हो गया है लगता है, बहुत अच्छे। सुनीता जी, अब बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाई नो वाइफ्स डे सेलिब्रेट, व्हाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम?
4: मेरे ख्याल से बीइंग अ वाइफ, आई आल्सो फील इट, कि वाइफ को खुश रखना सबसे मुश्किल काम है, नामुमकिन, नामुमकिन ही बोल सकते हैं। तो इसलिए सुनीता शर्मा।
0: सुनीता भाई, अब काश मेरी बीवी सुन रही हो। हेलो ज्योति, तुम सुन रही हो? देख लो, मैंने नहीं कुछ कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये लेडीज खुद से कह रही हैं। मैं घर आऊंगा तो मेरे को नहीं कुछ कहना आपने, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच सुनीता फॉर दैट कॉल। लेट्स सी हु डू वी हैव नेक्स्ट विद अस ऑन फनेशिया। गुड इवनिंग, हु इज दिस?
5: काशिफ हियर।
0: काशिफ भाई, क्या हाल
5: आप? पागल भाई,
0: ऊपर वाला मेहरबान, खुलिए हमारी दुकान 7 बजे तक, फुल है पकवान।
5: ठीक है भाईजान, तो भाई प्रॉब्लम ये है कि ये दुनिया को, मैं हर इंसान को पता है कि बीवी को खुश करना नामुमकिन है।
0: बीवी, तो, बीवी, बीवी, बीवी, बीवी ना होगी, डॉन ही होगी भाई। बीवी को खुश करना नामुमकिन है, तो डॉन को पकड़ना नामुमकिन है। एक कॉलर और लेंगे, उसके बाद चलते हैं जी आगे टुवर्ड्स आवर ब्रेक। गुड इवनिंग टू यू फनेशिया, हु इज दिस? रेडियो वॉल्यूम कम, आपका बढ़ा लो, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो, अपना बढ़ाइए। कौन बोल रहा है?
6: चलो, मुझसे बात कर रहे हैं?
0: मैं सर, आपने मुझे कॉल किया, मैं शाहरुख खान से बात तो
6: बरोबर।
0: तो बताइए,
6: कालिदास है?
0: कालिदास, क्या बात है कालिदास, मीट मारविन दास, वेरी नाइस टू मीट कालिदास। अच्छा,
6: वेरी नाइस मीटिंग यू सर।
0: काली साहब, ये बताइए, हाँ जी हाँ जी, ये बताइए
6: आपकी सवाल की, आपका सवाल का
0: जल्दी 10 सेकंड है आपके पास।
6: द वाइफ इज ऑल द टाइम हैप्पी टॉर्चरिंग हस्बैंड।
0: हाँ, हैप्पी टॉर्चरिंग द हस्बैंड, ये बेचारा मासूम बोला है, देख लो। कोई कोई कहते हैं ना वो, मेंस हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। अरे भाई, कोई हमारे साथ खड़े होकर पर्चा लिखवा दो हमारा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ऑल इन फन, गुड फन, राइट हियर ऑन फन एज रेडियो। ब्रेक के बाद आगे बताता हूँ जी कौन है विनर फॉर आर छोले भटूरे या फिर आलू नान। कमिंग अप फ्रॉम पंचतारा, दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो ओनली ऑन फन एज 104.9 FM। डोंट गो एनीवेयर, मैं अभी आया।
7: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels,
8: बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन फ्रॉम 20th जून सैटरडे ऑनवर्ड्स एंड गेट एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्साइटिंग सेलिब्रेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज टू विन ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसेस। PMJ Jewels, ट्रेडिशन क्राफ्टेड, स्टाइल डिफाइंड।
9: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
10: Calculating route, rerouting.
9: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
10: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
9: क्यों?
10: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं, डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
9: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
11: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
10: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
12: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
9: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
13: पापा, फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
14: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
15: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father need is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
16: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
9: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
16: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
17: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
18: उमर ख्वाजा।
19: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
15: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा is now open at a new location in Allen. वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट विजिट।
20: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
21: हाँ।
20: घर रिलोकेट करनी है?
21: हाँ।
20: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
21: हाँ भाई हाँ।
20: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
22: डॉक्यूमेंट शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
1: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: मैं बहुत सालों बाद अपने एक दोस्त को मिला, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, है ना। तो पुराने कुछ पता ही नहीं हमें ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और पार्टी में बड़ा दुखी दुखी सा लग रहा था, मतलब ऐसा कि कुछ ठीक नहीं था ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई सब ठीक है और बता, शादी वादी हो गई तेरी? कहता नहीं यार, शादी तो नहीं हुई, मैं ऐसी परेशान हूँ। तो भैया जरूरी नहीं है कि हर बंदा शादी करके परेशान हो, बंदा बिना शादी किए भी परेशान हो सकता है। टेंशन कैन गेट टू एनीवन।
1: दास है रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास
0: है। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि हमें क्या जरूरत है टेंशन लेने की, हम मजे में मस्ती करने वाले लोग हैं जी। आप भी मस्त रहो, हम भी मस्त रहे। आपको पता है दुनिया में ना मैंने देखा है बहुत कम लोग अच्छे हैं, बहुत कम लोग, एक मैं हूँ और दूसरे आप सब हमारे फनेशिया के लिसनर्स। मक्खन लगा रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना है। कहीं अपने आप को शीशे में चक्कर लग पड़ोगे, हाँ हम अच्छे लोगों में आते हैं। हॉट

0: वो कहती थी हमेशा साथ रहूंगी, वो कहती थी हमेशा साथ रहूंगी, लेकिन ये तो बताया नहीं किसके।
1: चमेली गेंदा सब रास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये।
0: ब्रेक से वापस वेलकम करता हूँ जी। और ब्रेक पे जाने से पहले हम पूछ रहे थे जी के व्हाई डू वी डू नॉट हैव अ हैप्पी वाइफ डे। तो कईयों ने जवाब दिया जी के वो अलग हैं जी, किसी ने बोला, मैंने नहीं बोला, ये लेडी थी उनका नाम था सुनीता, सुनीता जी कहती है क्योंकि वाइफ को खुश करना बड़ा इम्पॉसिबल है। मैं नो, नॉट एट ऑल, गलत जवाब, क्योंकि देखो मैं अपनी वाइफ को खुश रखता हूँ जी, बिल्कुल हैप्पी। और उसकी दो तरीके कि शी इज़ ऑलवेज राइट एंड शी ऑलवेज राइट, आई कैन इधर बी राइट और बी हैप्पी। सिंपल है लाइफ में खुश रहना, कोई बड़ी बात नहीं है, वही बस तीन तरीके हैं। पहले दिल की सुनो, फिर मन की सुनो, और फिर वही करो जो बीवी कह रही है। This part of the show is brought to you by Passion Health. उनके बारे में बाद में बताता हूँ, पहले विनर बता दें जी हम अपने सेगमेंट का। उनका नाम था जी शिवानी। शिवानी जी, आप अगर पंच तारा जाके उनके छोले भटूरे खा सकती हैं तो आप मेरे स्टूडियो पे कॉल करेंगी, फटाफट कर लेना, नहीं तो पोल से आ जाती है। फोन नंबर है 972-235-5555, याद रहेगा ना। शिवानी फटाफट फनिशर रेडियो पे कॉल करना है और अपना इनाम आपने उठाना हैगा है, ठीक है। दिलजीत के बाद पैशन हेल्थ कमिंग अप।

अर्जुमन जी की रिक्वेस्ट पे आया था जी ये वाला गाना गुन गुन गुनारे गुन गुन अग्निपथ वाज द फिल्म प्रियंका चोपड़ा एंड ऋतिक रोशन इन दिस वन सुनिधि चौहान की आवाज अनदर टैलेंटेड टैलेंटेड वेरी टैलेंटेड सिंगर शी इज इंडीड 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो एंड माय विनर इज ऑन हियर शिवानी जी कांग्रेचुलेशंस टू विन योर पांच तारा का छोले भटूरे या आलू कुलचा एंड विद दैट आई हैव एक गाने का और वक्त है आई कैन स्क्वीज दैट इन And uske baad, we will take a short commercial break. Do remember, Vishal and Shekhar are coming to entertain you this July 12th at the Curtis Culver Center. Agar abhi tak bhi aapne unki tickets nahi li hain, to do not wait. It is going to be a sold out show for sure. Jaldi jaiye, kyunki achhi seatein jo hain, wo jaldi nikal jati hain. So you've got to go quickly. And the tickets are available at cashpatelproductions.com. That is cashpatelproductions.com. Here we go with the next track. Which is in celebration of Paul McCartney's birthday. Today was the day, 18th of June, 1942, when this singer-songwriter was born.

0: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
0: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
2: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: आई हैव बीन रिसर्चिंग रिटायरमेंट प्लानिंग।
5: ओह रियली? वेयर?
4: गूगल, यूट्यूब, अ गाय ऑन टिकटॉक।
5: और यू कुड जस्ट टॉक टू वेल्थ एक्टिव।
4: व्हाट्स द डिफरेंस?
5: दे क्रिएट अ रियल रिटायरमेंट स्ट्रेटजी, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट्स बट अ प्लान फॉर व्हेन योर इनकम स्टॉप्स.
6: Wealth Tactic, because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
7: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
8: It's Lawson.
7: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
8: It's Lawson.
7: Daddy, what is the law?
9: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां मां सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
12: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
11: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Naye dost mazedar lagte hain. क्योंकि कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
17: दोस्ती, प्यार और फिर वही इमोशनल कैओस। 2012 की सुपरहिट कॉकटेल के बाद एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी लेकर होमी अजजानिया इज बैक विद कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदना।
18: गेट रेडी एज द परफेक्ट कॉकटेल मिक्सचर विद कॉकटेल 2, रिलीजिंग ऑन द 19th of June एट थिएटर नियर यू।

0: स्टेशन गंदे सॉन्ग यार।
1: फैंसी नहीं पागल है यार।
0: क्यों?
1: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
0: But why it's iconic?
1: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने का, छोड़ दे। आजकल जनता ना बहुत पिक्चरस हो गई।
0: But imagine how the song would look if Ali, Kunal and Diya did it. Our version. That's what I'm saying, now you're getting me.
1: You guys want to audition? Yeah? ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

आज ही के दिन अगर बात की जाए एक और सक्सेसफुल चीज जो आज के दिन बनी थी, बिकॉज आई डू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन टुडेज डेट. टुडेज डेट वाज द डेट व्हेन दिस मूवी, जिसका नाम हम सब जानते हैं और हम सब ने बहुत पसंद की, दैट वाज नन अदर देन हम दिल दे चुके सनम. आज ही के दिन ये प्रीमियर की थी जी. दिस मूवी केम आउट ऑन टुडेज डेट, द ईयर वाज 1999, एंड मुझे याद है कि उस टाइम मैं नाइन्थ में होता था, एंड अ बंच ऑफ अस गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम स्कूल वेंट टू सी दिस मूवी, एंड उस टाइम का जो मजा था वो आज तो दोबारा नहीं आएगा. नॉनदलेस दिस मूवी इज सो स्पेशल. आई थिंक एवरी वन हु सीन दैट मूवी ड्यूरिंग दैट टाइम फेल्ट स्पेशल अबाउट इट, स्पेशली अगर आप 80s 90s के बच्चे हैं, 80s के रादर, 70s 80s लेट 70s 80s. आई थिंक दिस मूवी वॉज डेफिनेटली वन दैट सैट वेरी क्लोज टू आर हार्ट्स. उसका कुछ गाना लगाता हूँ आपके लिए और बताना चाहता हूँ कि जैसी ज्वेलरी आप देखते हैं ना हम दिल दे चुके सनम में, उसी तरह की ज्वेलरी आपको मिलेगी जी एट PMJ Jewelers. They are now open in Frisco and are celebrating their grand opening. This is going to be on Sunday the 20th of June. और इसके लिए आपको स्टोर पे पहुंचना है 11 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक दोपहर को, from 11 AM to 2 PM. This is at their store in Frisco. कहाँ पे खुला है मैं आपको बता रहा हूँ. It is on Main Street and you can discover some great deals that are only available on that day. जैसे कि exclusive offers हैं, of course बहुत सारे specials लगे होंगे. Then you have exciting festivities which are being celebrated there and you have chances to win beautiful jewelry pieces. The wait that you've been waiting for is over. PMJ Jewelers is now coming to Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. Aap stunning gold se leke, diamonds se leke, bridal collection, sab kuch milega jo aap ek jewelry store pe expect karte hain. Actually, PMJ will break your expectations. You'll see designs that you never thought of and fall in love with them. Make sure aap jaye wahan par this Sunday, Saturday rather, on the 20th of June, 11 AM to 2 PM. और ये जो स्टोर है प्राउडली एसोसिएटेड है विद महेश बाबू एंड सितारा गत्तामनेनी. PMJ, a name trusted by generations, now open in Frisco on Main Street.